0: 10 years of aapka hamara 24/7 rehne ka saath.
1: Congratulations and celebration.
0: Masti Media Network thanks you for your continued love and support as we celebrate 17 years since our inception and 10 years of 24/7 broadcasting as Singapore's only live Indian media platform. And we have only got bigger. Download the Masti Media 24/7 app today. Same Masti, bigger universe.
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: I love birthdays. I absolutely love birthdays. चाहे वो birthday मेरा खुद का ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरे अपने मस्ती का ही क्यों ना हो. I know, it is ऐसी वाली feeling है. ऊपर से 90s वाला भी show आ जाए, मतलब कि क्या ही कहे. I think सोने पे सुहागा. This is what it is called. Hello, hi, welcome, namaste, radio मस्ती 24/7 जिसको हो चुके हैं आज 10 साल. And अगर उससे पहले की भी बात की जाए तो ऑल इन ऑल मस्ती को हो चुके हैं 17 साल इन एग्जिस्टेंस. सीरियसली, बर्थडे हो, 90s का शो हो, ओ माय गॉड. वैसे 90s में बर्थडे का सबसे बड़ा, मैं बाय द वे 90s वाली आपकी अंतरा, जस्ट इन केस नहीं पता हो तो, इतनी एंथुजियास्टिक और इतनी एनर्जेटिक और बर्थडे को लेकर इतनी एक्साइटेड आवाज मेरी ही हो सकती है इस टाइम पर. ओके, सो 90s में बर्थडे का सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता था? केक ना, गिफ्ट नहीं, स्कूल में टॉफीज कितनी लेकर जानी है. कितनी बार हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं, है ना. एक बड़ा सा पैकेट हाथ में, बर्थडे जो हमारा ड्रेस होता था वो अलग से पहन के जाते थे. आज इसका टीचर अनाउंस करती थी बर्थडे है, सडनली यू आर सेलिब्रिटी ऑफ क्लास. रेडियो मस्ती. आज ही क्या, हमेशा से ही आई थिंक मस्ती मीडिया नेटवर्क हैज बीन द सेलिब्रिटी इन इटसेल्फ. मैं सोच ही रही थी कि मतलब कितना अच्छा हो गया ना, हम लोग नॉस्टैल्जिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं और नॉस्टैल्जिया की बात करते हुए आज हमारा यू जो है हैप्पी वाला बर्थडे भी पड़ गया. बट वेल, हम लोग जैसे अपना शो करते हैं वो तो करते हुए ही जाएंगे. एंड इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रेडियो मस्ती 24/7 दैट इस शो का भी जन्म हुआ. ये शो का आइडिया तो काफी टाइम से था, बट इसको क्यूरेट करते करते और एक शेप लेते लेते जो है एक वक्त लगा, लेकिन जब से इसने शेप लिया देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक. वी ऑल हैव बीन लविंग इतना कि कई बार जो है सलमा जो है और सपना आंटी जो है एंड लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो हैव रिटन टू अस कि यू नो घंटे बढ़ा दो. पहले मंडे को होता था ये वाला शो, उसके बाद फिर थर्सडे को शिफ्ट हो गया, तो वो शिफ्ट भी थोड़ा सा इनिशियली एक हिच आता है ना कि तो पहले ज्यादा अच्छा था ना. सब अच्छा होता है भाई जब आप और हम साथ में मिल जाते हैं, माहौल तो वहीं पर बन जाता है. सो यस, हमारा माहौल 90s वाला यूं ही बना रहेगा और हम अपना सफर और आज की ड्यूटी बिल्कुल ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे. ज्यादा सेलिब्रेशन जो है प्रॉपर टाइप की वो होगी एकदम हमारे शाम के एनिवर्सरी स्पेशल शो में. जस्ट इन केस अगर आप ऑनकोर सुन रहे हो, कह रहे हो कि अच्छा शाम को शो होने वाला है, मैं कह रही हूँ कि ये जो है आप ऑनकोर सुन रहे हो जो कि सैटरडे को आता है. कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, वेल अपने जो है प्लेलिस्ट का 90s वाले सिलसिला शुरू करते हैं एंड लेट्स एंजॉय मस्ती 90s मिक्स टेप एंड हैप्पी बर्थडे टू अस.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: अरे भाई, समोसा कहाँ है? बेकरी वाली चिप्स कहाँ है? नमकीन में नहीं दिख रही है। ये कैसे 90s वाली बर्थडे पार्टी चल रही है जहाँ पे ये सारा चीज पेपर प्लेट पे नहीं नजर आ रहा है? वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, आप हो मेरे यानी कि 90s वाली आंत्रा के साथ। यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई, जब तक ये प्लेट में ये सारी चीजें तैयार ना हो, पैटीज वैटीज ना नजर आए, तो हमको लगता ही नहीं है 90s वाला हम लोग यहाँ पे बर्थडे मना रहे हैं। बट वेल, कमिंग बैक, चलो 90s की कौन सी याद अब किस पन्ने को पलटा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, tell me this happened in your building as well। आप अगर थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे रहते हो और सडनली मम्मी को याद आया कि अरे यार, ब्रेड तो खत्म हो गई, अब नीचे कौन जाए? सी, हर जरूरी नहीं था, उस टाइम पे इतनी लिफ्ट्स वगैरह नहीं होती थी अपार्टमेंट्स में। बच्चा जो है आपका होमवर्क कर रहा है, एटलीस्ट ऑफिशियली आप ऐसा मानना चाहोगे, एंड शॉपकीपर लिटरली जो है आपके घर के नीचे है। सोल्यूशन क्या? बालकनी से बास्केट लटकाओ। 90s में होम डिलीवरी ऐप तो नहीं थे, रस्सी जरूर थी, एक प्लास्टिक की बास्केट या कभी कपड़े का थैला जो है हैंडल में एक लंबी सी रोप सिक्योरली टाई करके उसमें पैसे डालिए, बालकनी से लीन करके नीचे देखो, भैया, नो रिस्पॉन्स, लिटिल लाउडर, भैया एक ब्रेड और दूध दे देना, एंड एंटायर मोहल्ला नाउ नोज कि आपके घर में दूध और ब्रेड जा रहा है। फिर बास्केट स्टार्ट करती थी अपनी जर्नी धीरे धीरे, केयरफुली, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, मम्मी ऊपर से, हाँ हाँ, बस बस बस बस, भैया पैसे निकालेंगे, ब्रेड और दूध रखेंगे। और उस टाइम पे दूध का पैकेट जो है वो आया करता था, लाल, नीला, पीला, वो फुल क्रीम और ये सारी चीजें हुआ करती थी। समटाइम्स चेंज भी उसी बास्केट में, एंड देन मैनुअल क्विक कॉमर्स begins अपनी रिटर्न जर्नी। रस्सी को ऊपर खींचो, हाथ ओवर हाथ, बास्केट गोइंग अप, एंड सडनली समवन डाउनस्टेयर्स, अरे आंटी ब्रेड गिर जाएगी, एंड देन मम्मी लाइक सीधा रखो बेटा। एज अ बालकनी बास्केट हैड इट्स ओन डिलीवरी का एग्जीक्यूटिव, नहीं? और सबसे एक्साइटिंग तब जब सब्जी वाला नीचे से निकला और बालकनी से ऐसा, भैया आलू क्या भाव है, एंड देन ही शाउट्स द प्राइस फ्रॉम देयर इटसेल्फ। मम्मी नेगोशिएट्स फ्रॉम आवर सेकंड फ्लोर, इतना महंगा, भैया लुकिंग अपवर्ड्स, मैडम अच्छा आलू है, दिस इज नॉट शॉपिंग एनीमोर, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लोमेसी जो चल रही है। देन ऑर्डर जो है शाउट करके ऐसे ही बताया कि आधा किलो टमाटर, धनिया मिर्ची तुम डाल ही देना। दैट लास्ट पार्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, धनिया फ्री वाला रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड एज किड्स ऑब्वियसली हमको बास्केट ऑपरेट करनी थी, मम्मी मैं नीचे करती हूँ, एंड द फर्स्ट 5 seconds वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड देन स्विंग इट स्लाइटली, एंड देन अचानक से पीछे से हिलाना मत, पैसे उसमें, एंड देन द ऑपरेशन ऑफकोर्स गेट्स कैंसल्ड, अडल्ट जो है टेक्स कंट्रोल। व्हाट आई लव इज दैट देयर वाज समथिंग सो वंडरफुली नेबरहुडिश अबाउट द होल थिंग। शॉपकीपर न्यू विच बालकनी वॉज कॉलिंग, सब्जी वाला रिकोगनाइज द वॉइस, नेबर पासिंग बिलो माइट कलेक्ट समथिंग फॉर यू। सो कोई ऑर्डर नंबर नहीं, कोई OTP नहीं, नो राइडर इज अप्रोचिंग टाइप ऑफ सिस्टम, बस बालकनी से एक आवाज, भैया, हाँ मैडम। है ना 90s वाली याद, यही तो है मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: reinventions, incredible highs, and some moments जब giving up शायद थोड़ा सा easier option था, कई बार सोचा था. लेकिन आप रहे हमारे साथ, हमारे listeners, हमारे clients, our partners, our artists, our team members, past and present. हर इंसान जिसने विश्वास रखा मस्ती पर, सपोर्ट किया हमें, चैलेंज किया हमें, फोन किया हमें, मैसेज किया हमारे साथ, एडवर्टाइज किया हमारे साथ, आप हंसे, एंड समटाइम्स आपने हमें कंप्लेन भी किया. You became a part of our story, and from radio to Masti AVI, from events and community initiatives to Masti Media Academy, aur ab original content aur productions, aur ab to mera behind the success with Renuka, jo aaj hi launch hua hai, we have kept evolving. But ek aisi cheez jo kabhi nahi badli, wo hai the heart of Masti. When I look back today, I feel proud. I feel grateful, and more than anything else, I feel excited about what comes next. Kyunki 10 saal was never the destination, it was only the beginning. So thank you, Singapore, thank you to our listeners around the world, and thank you to everyone who has been a part of this extraordinary journey. To the memories jo humne banaye hain, and to everything still waiting to be created. Main hu Renuka, the founder of Masti Media Network. Happy 10th anniversary humko, aap sabhi ko, of Masti Media 24/7. Keep listening, keep believing, keep the Masti alive. One network, endless possibilities. Thank you from the bottom of my heart.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxon India, the Family Expo, is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. Masti Media Academy is now open for admissions. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ.
3: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना. ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना.
6: आज हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो फिर बर्थडे पार्टी में कोल्ड ड्रिंक कैसे नहीं आ सकती. आएगी ही आएगी, कांच के बॉटल में, क्रेट में भर भर के आएगी, और उस सभी के कैप्स हम इकट्ठा करेंगे, बिकॉज दैट्स सच अ 90s थिंग टू डू, इजंट इट. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्स टेप. मैं 90s वाली अंतरा आपके साथ यहाँ पर. भाई हमारा जो है बर्थडे सेलिब्रेशन तो है ही है, बट उसी के साथ साथ भाई कैप कलेक्ट करना. शॉपकीपर जो है फ्रिज से जब ठंडी ठंडी ग्लास की बॉटल निकालता था, बॉटल का ओपनर लगाता था, और फिर वो चक से वो कैप उड़ के बस 90s का समर का साउंडट्रैक रेडी. और वो बॉटल हाथ में आती जो फीलिंग आती थी ना, ग्लास इज आइस कोल्ड, बाहर वो टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, अंदर बबल्स रेसिंग अपवर्ड्स, और हम बॉटल को लाइट के अगेंस्ट देख रहे हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च चल रही है हमारी अलग ही. थम्सअप हो, लिम्का हो, गोल्ड स्पॉट हो, माजा हो, पेप्सी हो, कोका कोला हो, ग्लास बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने का एक्सपीरियंस ही अलग था बॉस. स्ट्रॉ प्लीज, हम बच्चे करते हैं ऐसा. बॉटल सीधा लिप्स पर, फर्स्ट सिप

वो फिजी सा अटैक, आंखों तक गैस जाती थी, फिर बर्प को कंट्रोल करना बिकॉज ऑफ कोर्स लोग खड़े हैं आसपास, एंड हियर इज द इंपॉर्टेंट बिट, आप कोल्ड ड्रिंक लेकर कैजुअली घर से निकल सकते नहीं थे बिकॉज शॉपकीपर भैया यही कहते थे कि बॉटल यही रखे जाना. Of course, bottle belong to the system. you are temporary beverage tenant. So, dukaan ke bahar khade khade aap usko finish karte the and suddenly drinking cold drink becomes very, very competitive. Friend is halfway done. You are still sipping. Jaldi pi. Arre, kyun bhai? Last local train thodi na pakadni hai. But bottle may have belonged to this shopkeeper. Ye jo cap gir gayi hai niche. Now, that was interesting. Cap counter pe pada hai. Logo visible hai. Slightly bent from the opener. Right, and immediately bhaiya cap le lu because 90s kids could collect literally anything and turn it into a treasure. Bottle ke caps, matchbox ke labels, stickers, marbles, random shiny things whose future purpose was absolutely nothing, but throw them away, how dare you. And those crown ke caps had personality, alag logos, different colors, some perfectly open, some bent like they have survived an accident. Sometimes we would flatten them ekdam aur bhi zyada ekdam chapat kar dete the usko. Sometimes just keep them, and if your friend had a cap you did not have, suddenly playground ki economics jo hai wo shuru ho jati thi. Ye de de, nahi, main tujhe do stickers dunga, ye wala de de. International trade negotiations bhai 6-7 साल की उम्र में ही हमने शुरू कर दी थी. एंड रिमेंबर दोज ओल्ड शॉप के रेफ्रिजरेटर्स, बड़े हैवी से उनके दरवाजे होते थे, रोज ऑफ ग्लास बॉटल स्टैंडिंग अपराइट, दैट क्लिंकिंग वाला साउंड व्हेन शॉपकीपर भैया जो है एक जो है उसमें से बोतल निकालते थे, क्लिंक क्लिंक क्लिंक क्लिंक, एंड देन द ओपनर चक. ऑनेस्टली हाफ द थर्स्ट प्रोबेबली केम फ्रॉम हियरिंग समबडी एल्स ओपन द बॉटल फॉर यू. एक सिप, फिर शेयरिंग भी कभी कभी होता था कि मम्मी का मेरी अक्सर मांग लेते थे, बस एक सिप दे दे, टेस्टी करना था. देन ऑफ कोर्स योर सिबलिंग गेट्स वन. नाउ वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. बट वंस द बॉटल वॉज फिनिश्ड यू वुड समटाइम्स टर्न इट अपसाइड डाउन, वेट, वो जो एक जिद्दी वाला ड्रॉप स्लाइड स्लोली टूवर्ड्स अप टूवर्ड्स द माउथ. यस, worth waiting for. The bottle back on the counter, transaction is over, except maybe there was one little crown cap sitting safely inside aapke pocket mein jo aapke saath aapke ghar jayega. It's funny kyunki aajkal drinks jo hai they arrive in cans and pet bottles and delivery bags, but ek mention a 90s cold drink bottle and my brain doesn't first remember the taste, it remembers the weight of that glass and that cold condensation on your palm and the bubbles and that one gorgeous sound.

0: Hello everyone there. I am Dr. Hitendra K. Doshi and it gives me a great honor to celebrate Masti Media 24/7 on this special occasion of the 10th year anniversary. Masti Media has been a significant part of my journey thus far because it has always lightened my day with a lot of masti. Therefore, to all of you out there, wait no more. Download Masti Media 24/7 today because it's only there to lighten every moment of your life. With those words, I want to wish Masti Media a happy 10th anniversary and continue doing what you're doing because it's a great healer. Take care and all the best.
1: Tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore. 2 days. Endless style. One destination.
4: It's a Masti partnered event.
5: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना ऐसा था 90s का जमाना ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना
6: हैंडल टूट गया तो क्या हुआ मतलब फेंकना है 90s में फेंकना है कौन फेंकता है 90s में कोई नहीं फेंकता रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप जी हाँ 90s के हाउसहोल्ड का ये अनरिटन रूल जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि अगर किसी चीज का 60% हिस्सा भी बाकी है तो वो चीज बिल्कुल ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे बाथरूम का प्लास्टिक मग एक टाइम पर जो ब्रांड न्यू हुआ करता था ब्राइट पिंक ब्लू ग्रीन प्रॉपर कलर फिर धीरे धीरे कलर फेड हुआ स्क्रैच आ गए हैंडल में क्रैक आया और एक दिन टक से हैंडल टूट गया आज के दिन में अगर हो तो परहैप्स रिएक्शन होगा कि ओके भाई नया मग ले आओ इट इज दिस इज व्हाट आई डू नाउडेज 90s में मम्मियों का रिएक्शन तो था कि मग तो ठीक है ना हैंडल ही तो टूटा है बट पकड़ू कहां से अरे भाई ऊपर से पकड़ो बस केस खत्म वहां पे और फिर वो हैंडललेस मग बाथरूम में इतने साल सरवाइव करता था कि आप भूल ही जाते थे मग्स आर एक्चुअली सपोज टू हैव हैंडल्स यू डेवलप योर ओन टेक्निक रिम से पकड़ो दोनों हाथ से पकड़ो बकेट में डिप करो पानी भरते ही सडनली स्लिपरी एंड पटाक वापस बकेट में ही जाके वो डूब जाता था हाफ द वॉटर फेस पर एंड कंग्रेचुलेशंस बाथ हैज स्टार्टेड ऑटोमेटिकली एंड नेक्स्ट टू इट द लेजेंडरी प्लास्टिक का हमारा बकेट ओरिजिनली परहैप्स ब्राइट रेड बट बाय द टाइम वी न्यू इट सम मिस्टीरियस शेड बिटवीन पिंक एंड ऑरेंज एंड बहुत पुराना इनसाइड वाटर लेवल के मार्क्स आउटसाइड स्क्रैचेस हैंडल स्लाइटली बेंट मेटल हैंडल का प्लास्टिक ग्रिप कब था वो तो गायब ही हो चुका होता है बट रिप्लेस इट ना ना ना बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड इंजीनियरिंग लीक तो नहीं कर रही है ना That was the benchmark. And buckets also had hierarchy. एक नहाने वाली, एक कपड़े भिगोने वाली, एक पोछे वाली. And सच्ची में यार, अगर तो तुमने mix कर दिया, फिर तो पिटाई पक्की है. So you innocently picked one, right? Your parents used to tell from another room. Somehow they sense that disturbance in the universe. कि वो वाली नहीं उठाना, नीली वाली उठाना. I don't know. I still don't know. How do mums know everything? राइट सीसीटीवी भी नहीं था उस टाइम पे तो देन देयर वाज दिस बकेट जिसका हैंडल बहुत ही एक पर्टिकुलर सी जो है एक आवाज ऐसे करके आवाज करता था एंड एवरी टाइम यू लिफ्टेड इट विद फुल वाटर यू न्यू दैट पता नहीं किसी भी वक्त इसका कुछ भी हो सकता है इसका रिटायरमेंट बहुत पास है स्टिल आप उसको उठाते थे वेरी स्लोली बॉडी स्लाइटली यू हैव टू काइंड ऑफ बेंड अवे बिकॉज अगर तो हैंडल स्नैप कर गया तो पूरे बाथरूम में सुनामी ही आ जानी है बट दिस वॉज नॉट रियली अबाउट being you know confused things just stayed with us longer that was pure 90s and इसीलिए आज तक ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिट है बट इस मामले में नहीं है अब मैं तुरंत चेंज कर देती हूँ लाइक ओ मौका मौका पैसे इसीलिए नहीं सेव हो रहे

0: हैप्पी बर्थडे, वो भी 10th वाला। तो फिर चलो गिफ्ट लाओ।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क थैंक्स यू फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट एज वी सेलिब्रेट 17 इयर्स सिंस आवर इंसेप्शन एंड 10 इयर्स ऑफ 24/7 ब्रॉडकास्टिंग एज सिंगापुर्स ओनली लाइव इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वी हैव ओनली गॉट बिगर। डाउनलोड द मस्ती मीडिया 24/7 ऐप टुडे। सेम मस्ती, बिगर यूनिवर्स।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: आई लव यू रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.
4: ना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो, ओ जाना सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। ना ना ना, चलो बिचू हुआ जाने दो, रोकना चाहती थी मैं अपने आप को, बट यार 90s के गाने ही ऐसे हैं। एक बार आप गुनगुनाना भी शुरू कर दो तो इट्स सो हार्ड टू स्टॉप योरसेल्फ, इजंट इट। आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप, मैं हूं आपकी 90s वाली अंतरा ऑन रेडियो मस्ती 24/7। भाई कभी हाँ कभी ना, शाहरुख खान हमारे क्या ही क्यूटी पाए लगे यार इस वाली मूवी में। वेल चलिए कुछ मूवीज की भी बात हो ही जाए, जब सेलिब्रेशन हो रही है हम कैसे 90s वाले 90s के सिनेमा को पीछे छोड़ सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अस एंड वी हैव टू टेक इट एक साथ में और आगे बढ़ते रहना है। वेल कभी हाँ कभी ना जब मैं नाम लेती हूँ तो दिमाग में आता है गोवा एंड सुनील एंड एना एंड क्रिस और उनका छोटा सा बैंड एंड शाहरुख खान प्लेइंग अ हीरो हु वाज चार्मिंग, इरिटेटिंग, इनसिक्योर, फनी एंड वेरी वेरी फ्लॉड एज वेल एट द सेम टाइम। वो तो है अलबेला। और सबसे अनयूजुअल, हीरो को हीरोइन मिलती ही नहीं है इस मूवी में, बट हियर समथिंग आई रिसेंटली डिस्कवर्ड and I was like what, like really? So kabhi ha kabhi na ka first cut reports ke hisab se was around 5.5 hours long, 5.5 ghante. Sunil ko Anna mili hi nahi 5.5 ghante ke baad bhi, audience ka pura working day milne wala tha inko. So producer Vikram Malhotra jo hai, he recalled that when the first cut came together it was 5.5 hours long. Director Kunthan Shah jo hai then had this enormous job of cutting it down while preserving film ke characters and the emotional rhythm as well, and somehow that makes sense when you remember this film, because kabhi haan kabhi na doesn't feel like you are simply following ek plot ko. It feels like you are hanging around with these people. Band ke rehearsals ho rahe hain, Sunil jhoot bol raha hai, Anna ko impress karne ke plans bana raha hai, dost you know leg pulling kar rahe hain, Goa ki wo lanes and that wonderfully messy young adult life and music. Aakash ke hum hosh mein, kya gaane yaar, दीवाना दिल दीवाना, yeah, so many things, right? So Jatin Lalit ka soundtrack had that light and youthful and quality that fits Sunil ka world so beautifully. And here's another lovely bit of thing, if I don't know whether you know about that, the ending we know ki Sunil accepting ki Anna aur Chris ko saath mein rehna chahiye and walking away heartbroken and then encouraging ki another jo ek ladki aa jati hai, I think wo Juhi Chawla thi. So well, ओरिजिनली इसको ऐसा कंसीव ही नहीं किया गया था, तो फिल्म मेकर्स रिकॉल्ड इसका जो पहले वर्जन था, सुनील सिंपली वॉक्स अवे, दैट्स इट, कोई उसको कॉन्सोलेशन प्राइज में बंदी कोई दूसरी नहीं मिलती थी, इट वॉज जस्ट सुनील मूविंग ऑन। बट द टीम डिबेटेड कि भाई ऐसा नहीं है भाई, ऑडियंस नाराज हो जाएगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाई सुनील स्टेड विद सो मेनी पीपल, क्योंकि ही वाज नॉट द 90s हीरो हु एंटर्ड एंड ऑटोमेटिकली सब जीत गया। वो उसने झूठ बोला, मैनिपुलेशन किया, जेलस हुआ, ही मेस्ड अप थिंग्स एंड इवेंचुअली ही हैड टू एक्सेप्ट दैट द गर्ल ही लव्ड लव्ड समबडी एल्स। आउच। और उस टाइम पे इस तरह की चीज लोगों को समझाना और उसको कनेक्ट करना, यू नो राइट, 90s में इट वॉज डिफिकल्ट। एक तो गाना चला के मैं रहूंगी इस फिल्म का, इतनी तो बातें कर ली मैंने,

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: क्या बात कर रहे हो, क्या ही बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता था, हम तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा, यहां पर 90s वाली आपके साथ। यस भाई, हमारा 90s का सेलिब्रेशन कुछ ऐसा ही है, उन दिनों को याद करते हुए ही हमारा सेलिब्रेशन हो जाता है। यस यस, एंड भाई एक और मूवी की एक और बात लेकर मैं आई हूं, वो भी पूरे 90s में। आप भी इसको सुनकर कहोगे कि यार क्या बात कर रही हो सच्ची में। ओके चलिए एक काम करते हैं, जैसा जरा अपनी आंखें बंद करिए एंड इमेजिन यस बॉस मूवी, ठीक है। शाहरुख खान नजर आ रहे हैं राहुल के जैसे, जूही चावला बिल्कुल नजर आ रही है सीमा के रोल में, राइट। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं चांद तारे, एंड राहुल कॉन्स्टेंटली मैनेजिंग द रोमांटिक एडवेंचर्स अपने स्मूथ टॉकिंग मैरिड बॉस सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ प्लेड बाय आदित्य पंचोली, ठीक है, नजर आ गए ना ये सारे किरदार। अब आदित्य पंचोली को हटा दो, वहां पे रख दो नसीरुद्दीन शाह, जी हाँ नसीर साहब को। आपको एक मिनट, नहीं सॉरी ना, ग्लिच कर गई मैं तो, लिटरली ग्लिच कर गई, ऐसा लग रहा था कोई और ही मूवी में पहुंच गई मैं सडनली, बिकॉज दिस इज व्हाट यू डोंट नो अबाउट दिस मूवी। यस बॉस राइटर संजय छेल जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था दैट नसीरुद्दीन शाह वॉज ओरिजिनली ऑफर्ड द रोल ऑफ द बॉस, eventually played by Aditya Pancholi. So bhai Naseer sahab had some reservations about the script and also apparently he felt that he might be little too old for the character. Bhai good choice, itna hi main kehna chahungi. So that eventually did not happen. Then another name jo hai came into consideration, that was Jackie Shroff, Jaggu Dada. Imagine Jaggu Dada sitting there and Rahul going yes boss. Actually not that bad socha jaye to. Eventually the role went to Aditya Pancholi and then the writer sahab hamare jo hai yes boss ke, unhone kaha they felt he was the right pick for Siddharth. And once you know this, it's impossible not to mentally recast the movie, right? 1997 ki ye film. Rahul has bigger dreams than his salary. Seema wants to become successful. Boss ke paas paisa hai, office hai, bangla hai, gaadi hai, confidence hai, and absolutely no intention of behaving himself. And then there was Shah Rukh and Juhi and unki easy si chemistry and the teasing and the comedy and the expressions. Nothing looked too polished or too perfect. Even Rahul ka ambition jo hai, felt wonderfully 90s. आपको नहीं लगता कि चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। क्या लाइन लिखी है यार। जावेद अख्तर राइटिंग द ड्रीम ऑफ अ यंग बॉय हु बेसिकली वांट्स everything, and Jatin Lalit music just made the world a little bit cozier. They composed the film ka soundtrack with voices jisme Abhijeet hai, Sanuda hai, Udit Narayan hai, Alka Yagnik hai. Kaisa ekdam heartwarming sa feel aata hai, ya nahi 90s ka time hi gajab tha gajab. Gaana sunte hain yaar.

0: सबको नमस्ते, मैं हूं अक्षता जंतली और मुझे बहुत खुशी है कि हमें मस्ती मीडिया नेटवर्क फैमिली से जुड़े हुए 6 साल से भी ज्यादा हो गए। सो आवर जर्नी विद मस्ती फैमिली स्टार्टेड विद माय सन ऋषि। द एंटायर मस्ती टीम इज इनक्रेडिबली सपोर्टिव ऑफ हिज टैलेंट एंड हैज गिवन हिम वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस हिज मल्टीलिंगुअल म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस। और मुझे भी उनके कुछ इवेंट्स में वॉलंटियर करने का मौका मिला एंड आई मस्ट टेल यू देयर आर अ बंच ऑफ जॉयस सोल्स हुज मस्ती इज वेरी वेरी कंटेजियस एंड बिहाइंड दोस चीयरफुल फेसेस आर हार्ट्स ऑफ गोल्ड। Renuka, Antra and the entire team have always put in consistent and sincere efforts towards racial harmony, national integration and connecting communities. Hame bahut khushi hai ki hum is pyari si family ka hissa hai. So here's wishing a very happy 10th anniversary to our favorite Masti family and wishing you many, many more. Keep shining and spreading the smiles far and wide. And aap log bhi Masti Media 24/7 app zarur download kare aur jude rahe is mast Masti family se. Thank you. Josh me raho.
1: Josh me raho. Is Deepavali shopping hi? सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
2: 1, 2, 3, 4. Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musty Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

पेंसिल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स

ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टेबल क्लॉथ, याद आया आप सभी को? याद आया, कभी कंप्लीटली वो क्लियर होता था, कभी उसमें वो फ्लावर फ्लावर वाले प्रिंट्स होते थे, कभी उसमें फ्रूट्स बने हुए होते थे, कभी बॉर्डर पर ग्रेप्स एंड लीव्स, बिकॉज अपेरेंटली डाइनिंग टेबल को वाइनयार्ड बनाना बहुत ही जरूरी था। एंड उस प्लास्टिक कवर का एक ही मिशन था, टेबल को जिंदगी से बचाओ। दाल गिर गई, प्लास्टिक, चाय गिर गई, प्लास्टिक, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, प्लास्टिक, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक। एक्चुअल डाइनिंग टेबल जो नीचे है वॉज प्रोबेबली वंडरिंग मुझे खरीदा ही क्यों था। बट द बेस्ट पार्ट वॉज गरम सर्विंग बोल रखो एंड आफ्टर यू लिफ्ट इट अप परफेक्टली क्लाउडी व्हाइट कलर का सर्कल वहां पर बनता था। एवरीबडी पैनिक्स, अरे अरे अरे निशान पड़ गया। एंड देन 10 मिनट के बाद द सर्कल डिसअपीयर्स, द फैमिली रिलैक्सेस, मेडिकल इमरजेंसी इज ओवर। पानी गिर गया, नॉर्मली वाइप कर दो, बट समटाइम्स वाटर समहाउ स्नीक्ड जो है अंडर द प्लास्टिक। एंड नाउ वी हैव अ सिचुएशन यहां पे, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी इट, दैट वन ट्रैप्ड बबल ऑफ वाटर। सो यू प्रेस हियर, वुश उधर, देन यू प्रेस देयर, वुश वापस इधर। ऑब्वियसली एज किड्स हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, 15 मिनट हम उसको खेलते ही रहते हैं, मूविंग इट अराउंड, अंटिल वन ऑफ द पेरेंट जो है उसको नोटिस करता है, प्लास्टिक उठाओ एंड नीचे पानी चला गया है। एंड द एंटायर ऑपरेशन बिकम्स प्लेट्स हटाओ, सॉल्ट पेपर हटाओ, प्लास्टिक का एक जायंट कॉर्नर लिफ्ट करो एंड उसके नीचे से फिर उसको क्लीन किया जाता था। या प्लास्टिक हैड अ साउंड ऑफ इट्स ओन, राइट, स्पेशली बहुत स्टिकी जो है जब हो जाता था कि अपने आर्म टेबल पर रखा, लिफ्ट किया, स्किन टेम्परेली बिलोंग्स टू द टेबल क्लॉथ एंड द कॉर्नर्स, ब्रांड न्यू प्लास्टिक कवर, परफेक्टली फ्लैट, थोड़े महीनों के बाद एक कॉर्नर परमानेंटली कर्ल्ड ही रहता था अपवर्ड्स की तरफ, देन यू स्ट्रेटन इट, 2 सेकंड के बाद बॉइंग वापस से इट इज बैक अप। एट सम पॉइंट एवरीबॉडी सिंपली एक्सेप्ट्स कि हाँ ये कॉर्नर ऐसा ही है भाई, एडजस्टमेंट हो जाती थी हमारी। देन देयर वाज दिस वाइपिंग रिचुअल आफ्टर डिनर, वन डेडिकेटेड क्लॉथ, क्रम्स जो है कलेक्ट करो अपने हाथ में, प्लास्टिक वाइप करो इन लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रोक्स, एंड ऑफकोर्स बाद में मम्मी इंस्पेक्टिंग अगेंस्ट द लाइट कि भाई डाइनिंग टेबल यहां पर अभी भी चिपचिपा है, कैसे, हमने तो अभी क्लीन किया था। एक पॉइंट के बाद हम भाई बहन की ड्यूटी लगाई हुई थी कि खाने खाने के बाद एक दिन मैं करूंगी साफ, एक दिन वो करेगा साफ, एक दिन मैं, एक दिन वो। हम दोनों की अलग ही ट्रिक्स चलती थी, हम इतना टाइम लगा देते थे खाने में कि मम्मी के सोने तक का टाइम आ जाता था, हम दोनों भाई बहन लगे रहते थे, फिर उसके बाद मम्मी आधी नींद में हमको भूल जाती थी एट टाइम्स बोलना कि उसको साफ करना था, हम भी ऐसे चले जाते थे और फिर नेक्स्ट डे पड़ती थी डांट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मम्मी एकदम ही भूल गई हो। 90s and the dart and all of these things, they all go together so beautifully well.

0: एज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क आपसे एक बात तो करना चाहूंगी.
1: हैप्पी बर्थडे टू यू.
0: 10 साल sounds like a milestone, लेकिन मेरे लिए it feels like a 1000 memories. 10 साल पहले आप जानते हैं 1st October 2016 को रेडियो मस्ती 24/7 went live. पहला रेडियो चैनल जो कि प्राइवेट, जो कि 24 आवर्स, जो कि बॉलीवुड का, साउथ ईस्ट एशिया का, और जो कि फुली डिजिटल. Can you believe it? We actually have been pioneers. हमें पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होने वाला है. We only knew one thing, that Masti had to continue. And it did. Changing technology, changing times, a pandemic, challenges, reinventions, incredible highs. And some moments, जब giving up शायद थोड़ा सा easier option था, कई बार सोचा था. लेकिन आप रहे हमारे साथ, हमारे लिसनर्स, हमारे क्लाइंट्स, आर पार्टनर्स, आर आर्टिस्ट, आर टीम मेंबर्स, पास्ट एंड प्रेजेंट. हर इंसान जिसने विश्वास रखा मस्ती पर, सपोर्ट किया हमें, चैलेंज किया हमें, फोन किया हमें, मैसेज किया हमारे साथ, एडवर्टाइज किया हमारे साथ, आप हंसे एंड समटाइम्स आपने हमें कंप्लेन भी किया. You became a part of our story, and from radio to Masti AVI, from events and community initiatives to Masti Media Academy, aur ab original content aur productions, aur ab to mera behind the success with Renuka, jo aaj hi launch hua hai, we have kept evolving. But ek aisi cheez jo kabhi nahi badli, wo hai the heart of Masti. When I look back today, I feel proud. I feel grateful, and more than anything else, I feel excited about what comes next. Kyunki 10 saal was never the destination, it was only the beginning. So thank you Singapore, thank you to our listeners around the world, and thank you to everyone who has been a part of this extraordinary journey. To the memories jo humne banaye hain, and to everything still waiting to be created. Main hu Renuka, the founder of Masti Media Network. Happy 10th anniversary humko, aap sabhi ko, of Masti Media 24/7. Keep listening, keep believing, keep the Masti alive. One network, endless possibilities. Thank you from the bottom of my heart. Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti partner event.
3: मारी मेलोडी मारी जगत जननी.
4: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा
3: हेरमते आवे मारी.
4: It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
5: प्रेम, निशा,
6: राहुल,
5: अंजलि,
6: टीना,
5: इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन. 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे.
7: न जाने क्या 90s के दिनों में जो है फन ही आ जाता था ये पर्टिकुलर चीज करने में. रेडियो मस्ती 24/7 में अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हैं. भाई बचपन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनका कोई पर्पस नहीं हुआ था. नोबडी आस्क्ड अस टू सॉल्व देम. स्कूल का सिलेबस में भी नहीं हुआ करता था. ह्यूमैनिटी को आंसर करने की इसको जरूरत नहीं थी, बट 90s किड्स को रिसर्च तो करनी ही करनी थी. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक मिस्ट्रीज वॉज फ्रिज का डोर बंद करने के बाद अंदर की लाइट सच में ऑफ हो जाती है? बिकॉज थिंक अबाउट इट, जब दरवाजा खोलो तो लाइट ऑन, डोर बंद करो हमें क्या पता, राइट? मे बी फ्रिज हमसे झूठ बोल रहा है. सो इन्वेस्टिगेशन उधर चालू हो जाती थी. फ्रिज का डोर स्लोली क्लोज करो, फेस को गैप के बिल्कुल पास ले आओ, वन आई इनसाइड, फिर धीरे धीरे धीरे, लाइट इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल ऑन, ऑलमोस्ट क्लोज्ड, क्लिक, अंधेरा. बट ऑब्वियसली वन एक्सपेरिमेंट इज नॉट इनफ, रियल साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो वेरीफाई करते हैं अपने रिजल्ट को. सो ओपन क्लोज क्लिक, ओपन क्लोज क्लिक, अप्रोक्सीमेटली 37-47 टाइम्स अंटिल मम्मी किचन से चलाते रहे, फ्रिज क्यों खोल के खड़े हुए हो, क्या क्या है, कौन क्या गड़ा हुआ है वहां पे, कुछ नहीं कुछ नहीं, रिसर्च चल रही है यहाँ पे. देन वन डे यू डिस्कवर दैट द रियल सीक्रेट जो है, दैट टाइनी लिटिल बटन या स्विच वो डोर के पास फ्रिज के, यू हैव टू प्रेस इट विद योर फिंगर, तो लाइट्स ऑफ, रिलीज करो तो ऑन, प्रेस करो ऑफ, रिलीज करो ऑन, एंड सडनली यू फील लाइक दैट यू हैव क्रैक्ड नासा की टेक्नोलॉजी की, देखो. एंड मम्मी विल गो लाइक, हाँ पता तो है, व्हाट डू यू मीन बाय पता है, यू हैव बीन सिटिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन इतने टाइम से. देन नेचुरली जो है द एक्सपेरिमेंट इवॉल्व्स, फिंगर से स्विच प्रेस करके हेड फ्रिज के अंदर, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है. मीनवाइल ठंडी हवा जो है वो बाहर निकल रही है, कंप्रेसर ओवर टाइम करके वर्क कर रहा है, एंड समवेयर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वो तो इस बच्चे को कोई होमवर्क दे दो प्लीज, वरना तो बढ़ता ही जाएगा ये. एंड द ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स हैड देयर ओन पर्सनालिटी टू, द डोर्स वर रियली हैवी, देयर वाज दिस रबर लाइनिंग अराउंड इट, एंड दैट लिटिल फ्रीजर का कंपार्टमेंट जो अंदर था, समटाइम्स एक छोटा सा ट्रे अंडरनीथ कलेक्टिंग मिस्टीरियस वाटर, एंड द फ्रिज का डोर में बॉटल्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम सिस्टम, जो कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी को ही समझ में आता था, हमें तो नहीं समझ में आता था. एंड एक बॉटल हटाओ तो वो यहाँ क्यों रखी हुई है, हाउ डिड यू नोटिस, आई मीन कुछ और, एक और क्राइम इसमें, स्टैंडिंग विद फ्रिज डोर ओपन वाइल डिसाइडिंग आपको चाहिए क्या. फिर डांट पड़ती थी कि फ्रिज बंद करो, एसी नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाट आई वांट येट, राइट? सो पहले डिसाइड करो फिर खोलो. सो दिस वाज द लाइक एडवांस प्लानिंग वाला स्टेज, एंड समहाउ व्हेनेवर वी वर बोर्ड, फ्रिज खुल जाता था, नथिंग न्यू, बंद हो जाता था 10 मिनट के बाद, फिर वापस से खुल जाता था, एज इफ बिटवीन विजिट्स समबडी माइट हैव सीक्रेटली इंस्टॉल्ड केक, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक. ना जी ना, सेम लेफ्ट ओवर सब्जियां जो आपको ताक रही होती थी, बट द लाइट स्विच एक्सपेरिमेंट, या दैट इज प्योर प्योर चाइल्डहुड, प्योर प्योर 90s. इस बार करके देखो अपने घरों के फ्रिज में, ना ना ना, एक बार ट्राई करके देखो.

0: हमें 10 हुआ है मतलब 10 साल हो गए।
1: Congratulations and celebration.
2: Musti Media Network thanks you for your continued love and support as we celebrate 17 years since our inception and 10 years of 24/7 broadcasting as Singapore's only live Indian media platform. And we have only got bigger. Download the Musti Media 24/7 app today. Same Musti, bigger universe. Josh Mehra.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
4: आई लव यू रसना,
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। आइए घर के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात की जाए। यस यस, रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ, तो यहाँ पर जोड़े मस्ती 90s मिक्स टेप। और हमारी 90s की सेलिब्रेशन तो भाई कुछ ऐसी ही होती है, हर दिन ही ऐसा त्योहार जैसा लगने लगता है। और वैसे भी आज तो हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, यानी कि मस्ती मीडिया नेटवर्क का हैप्पी बर्थडे है मेरे दोस्त। सो वेल, एक जगह थी 90s के घर में जहां पर अगर चीज चली गई तो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दी जाती थी उसको। बेड और वॉल के बीच वाला वो पतला सा गैप, आप बेड पर होमवर्क कर रहे हो, पेंसिल रोल हुई है धीरे से, अरे रुक जा एंड टक गॉन। आप साइड से झांकोगे, अंधेरा, हाथ डालोगे, पेंसिल नहीं मिलेगी, बट somehow एक पुरानी हेयर क्लिप आपको जरूर मिल जाएगी जो आपकी है भी नहीं। अब पेंसिल इंपॉर्टेंट है तो रेस्क्यू ऑपरेशन बिगिंस। हाथ पूरा अंदर डालो, शोल्डर बेड के अगेंस्ट, चीक मैट्रेस पर, फिंगर्स डेस्परेटली सर्चिंग, मिल गई कि नहीं, नहीं कुछ और मिल गया है। एंड उस गैप में सिर्फ स्टेशनरी नहीं जाती थी, कॉइन्स, इयररिंग के वो पीछे वाले वो जो पेच होते थे, रबर बैंड्स, हेयर पिन, खिलौनों का वो टाइनी पार्ट, चॉकलेट के रैपर, वन रैंडम सॉक एंड वो टीवी रिमोट जो पूरे घर काफी देर से ढूंढ रहा है। सभी यहीं पे आके रेस्ट कर रहे होते थे, बट एक्चुअल इवेंट होता था जब मंथ्स लेटर मम्मी अनाउंसेस दैट आज बेड हटा के सफाई होगी, क्योंकि उन दिनों बेड्स बहुत हैवी जो है होते थे, तो वंस इन अ वाइल उसको ऐसे किया जाता था। नो, वी आर नॉट क्लीनिंग। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन शुरू की जा रही थी, बेड हटाया गया, एवरीबडी लुक्स डाउन, मेरी पेंसिल, 2 रुपए का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन, ये क्लिप तो मैं कब से ढूंढ रही थी। सडनली ऑब्जेक्ट्स मिसिंग सिंस 3 school terms अगो आर रिपोर्टिंग बैक फॉर ड्यूटी एंड ऑब्वियसली अलोंग विद द ट्रेजर। डस्ट, कितनी डस्ट भाई साहब, एक मिस्टीरियस फेदर, कुछ ड्राइड समथिंग नोबडी आइडेंटिफाइड, वन ऑब्जेक्ट एवरीबडी स्टेयर्स एट कि ये किसका है, नोबडी नोज। अपेरेंटली द बर्म्यूडा ट्रायंगल हैज स्टार्टेड इंपोर्टिंग ऑल्सो, एंड उसके बाद फिर भाई होती थी जबरदस्त सफाई, मतलब मैं क्या ही बताऊं। कैसी कैसी यादें जो है, मैं बात करना शुरू करती हूँ और 90s की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पर अगर आपकी भी कोई साथ साथ में ताज़ा हो रही है तो मुझे ज़रूर बताएं 9158963 पर।
1: Let's start the fun!

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: ओए चप्पा चप्पा चरखा चले,
3: कहाँ चले,
2: चप्पा चप्पा चरखा चले। रेडियो मस्ती 24/7 पर आओ चले 90s के दौर में, चले मस्ती 90s मिक्स टेप। आप सुन रहे हो, मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ। भाई आप इमेजिन करो, आप मुंबई में एक्टिंग क्लासेस कर रहे हो, कोर्स ऑलमोस्ट खत्म है, कोई फिल्म का ऑफर नहीं आया आपके पास, और दिमाग में वो क्लासिक स्ट्रगलर का कैलकुलेशन कर रहा चल रहा है कि एक्टिंग का ब्रेक तो पता नहीं कब मिलेगा, किसी डायरेक्टर को असिस्ट ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट साथ में फिल्म मेकिंग जो है वो सीख जाऊंगा। एंड देन समबडी टेल्स यू दैट गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम माचिस, एंड दैट्स प्रीटी मच वेयर जिमी शेरगिल हमारे जो है इतना क्यूटी पाय, आई लव्ड हिम, आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के हु लव जिमी शेरगिल। वहाँ पे जिमी शेरगिल की एक्चुअली जर्नी की शुरुआत हुई। बॉस डेस्टिनी ने जो स्टोरी में प्रॉपर 90s का बॉलीवुड का ट्विस्ट डाला था ना, क्या बात है। जिमी शेरगिल जो है वही खुद ही उन्होंने एक बार बताया था दैट ही वेंट टू मीट गुलजार साहब आस्किंग टू बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सो इवन इफ ही हैड टू बी ऑन लाइक द 8th और 9th असिस्टेंट, ही हैड हर्ड न्यूकमर्स जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं 5-6 साल के लिए बिफोर गेटिंग एक्टिंग ब्रेक, एंड ही सिंपली वॉन्टेड टू स्टे इन बॉम्बे उस टाइम पे एंड फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे। गुलजार साहब लुक्ड एट हिज दिस एक्टिंग स्टूडेंट एंड बेसिकली उन्होंने पूछा, एक्टिंग सीख रहे हो डायरेक्शन क्यों चाहिए। देन ही गेव जिमी शेरगिल इवेंचुअली बात बात करने के बाद माचिस का स्क्रिप्ट जो है मूवी का पढ़ने को दिया। जिमी शेरगिल केम बैक डीपली अफेक्टेड बाय इट एंड गुलजार साहब आस्क्ड हिम समथिंग ही एब्सोल्युटली वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, व्हिच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू प्ले। जिमी शेरगिल चोज जयमाल सिंह, हुज निकनेम इन द फिल्म वाज जिमी। व्हाई? बिकॉज हिज ओन पेट नेम वाज जिमी एज वेल। भाई गुलजार साहब एसेंशियली टोल्ड हिम अपनी बाल बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, यू आर डूइंग द रोल। एंड जिमी शेरगिल हैड सेड दैट ही ऑलमोस्ट फेल ऑफ द चेयर। इमेजिन आप गए थे, सर असिस्टेंट रख लीजिए, वापस आ रहे हो, मम्मी मैं गुलजार साहब की फिल्म में काम कर रहा हूँ। एंड व्हाट अ फिल्म टू बिगिन विद, 1996, तब्बू, चंद्रचूर सिंह, ओमपुरी साहब, गुलजार साहब, दैट म्यूजिक, विशाल भारद्वाज, चप्पा चप्पा चरखा चले, एंड दैट छोड़ आए हम वो गलिया, ओ माई गॉड, द मोमेंट दोज ओपनिंग नोट्स प्ले देर इज अ होल डिफरेंट टेक्सचर ऑफ द 90s दैट कम्स बैक। कोई ग्लॉसी स्विट्जरलैंड नहीं, कोई कॉलेज रोमांस नहीं, दिस वॉज दिस अर्दी एंड मेलंकलिक एंड पॉलिटिकल एंड पोएटिक। जिमी शेरगिल की लर्निंग वहाँ पे शुरू नहीं होती है वंस ही बिल्कुल गॉट द रोल। फॉर रफली अराउंड 20-25 days हिज पोर्शन वॉज नॉट बींग शॉट, बट ही आस्क्ड गुलजार साहब इफ ही कुड रिमेन ऑन सेट एवरी सिंगल डे, सो ही वॉच्ड द फिल्म मेकिंग हैपन बिफोर इवेंचुअली फेसिंग द कैमरा हिमसेल्फ। एंड आई लव दैट, दैट्स द पैशन। आई थिंक 90s के वक्त में जिस हम पैशन की बात करते हैं ना, ये वो पैशन होता है कि कोई बात नहीं, मतलब मैं रहूँगा, just let me be around, I want to watch, feel and experience every single moment so that I can eventually give my best. Ayyo, sachi mein kya din the wo din bhi kya din the।

0: गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताशकंद. दिस इज अ स्पेशल मैसेज फॉर रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर नेटवर्क. रेणुका जी, अंतरा जी, माय नेम इज घनश्याम आहूजा, अलोंग विद मी राधिका आहूजा, माय वाइफ. वी हैव बीन लिसनिंग योर रेडियो मस्ती फॉर मेनी इयर्स. कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एनिवर्सरी. और दूसरी बात, हमारी सिंगापुर सिंधी एसोसिएशन के कोलैबोरेशन में, आई बीइंग प्रेसिडेंट फ्रॉम देयर, आपने जो हमारी एसोसिएशन का 105 इयर्स का सेलिब्रेशन आपने जो कोलैबोरेट करके हमारा इन्फॉर्मेशन आपने लोगों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड मेनी मोर कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर एनिवर्सरी. एवरीबॉडी इन सिंगापुर, डाउनलोड मस्ती मीडिया 24/7 एंड हैप्पी एनिवर्सरी मस्ती मीडिया नेटवर्क.
1: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Musti Partnered event.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: यहाँ पर नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है और जब नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है तो भाई थोड़े पन्ने तो हम भी यहाँ पर पलटना चाहेंगे। रेडियो मस्ती 24/7, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। भाई 90s में सेलिब्रेट करने का कुछ ऐसा ही माहौल होता था कि घर घर के लोग ही जो है ऐसी सी प्लानिंग कर लेते थे, सब साथ साथ में आते थे, बैठते थे और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है किस बात का होता था कि भाई आज तो बाहर से खाना आएगा क्योंकि सेलिब्रेशन मतलब ही बाहर से खाना आना और बाहर का खाना खाना, इट यूज्ड टू बी अ रियली रियली बिग डील 90s के वक्त पर। तो या तो हम बाहर जाएंगे और ठेले पर जाकर वो जो है स्ट्रीट टाइप जो खाने हैं उसका मजा लेंगे, एंड आई थिंक बहुत बाद में आया था जब एक्चुअली में हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स वगैरह जाने शुरू किए थे। फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज हमारे रेस्टोरेंट थे वो जो एक एक मार्केट होती थी, मार्केट में ठेले लगते थे, ठेले पर जाकर जो है हम लोग

वहां पे बैंगन डाले जाते थे पिज्जा पे उस टाइम पे. सो दैट्स हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड. इट वाज नॉट पिज्जा हट और डोमिनोज हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द पिज्जा. वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ ठेला वाले भैया के साथ जो है हमारा हुआ कि भाई ये बड़ा ही एकदम इंटरनेशनल फॉरेन से चीज आई हुई है, एक बार खा के देखे मैडम, एक बार खाएंगी तो याद रखेगी, वैसा वाला फील आता था. सो आज भी जो हमारा सेलिब्रेशन है, आज मस्ती का हैप्पी वाला बर्थडे है. एज अ 24 आवर्स स्टेशन जो है 10 साल हो चुके हैं. 10 years. आई थिंक थैंक गॉड दैट वी डिसाइडेड एट 1st of October, आज से 10 साल पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम 24 आवर्स का स्टेशन खोलेंगे. क्योंकि उससे क्या है ना कि हमको कितनी सारी जगह मिल गई टू इनोवेट एंड क्रिएट सो मच एंड टू ऑल्सो गिव यू सो मच मोर, इजंट इट. तो तभी ये मस्ती 90s मिक्स टेप का भी उन्होंने कहा यार 2 घंटे में तो 90s मज़ा नहीं आएगा, 2 घंटे में तो फील आने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 3 घंटे का करते हैं. एंड I kid you not when I say that मेरे को लग रहा था शुरू में कि because जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो ना तो आप बड़े ही by the rule book चलने की सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, वैसा करके कि बस ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. बट धीरे धीरे when you get the ease out of it, फिर ऐसा ही होता है. मैं आती हूँ, मैं एक बार शुरू करती हूँ, फिर उससे जुड़ जाती है दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे ही पूरा जो है कारवा बनता हुआ चला जाता है. एंड इट्स बीन सो मेनी ईयर्स नाउ दैट मस्ती 90s mixtape has been here and it's all thanks to this platform jiski wajah se mujhe ye itna khoobsurat, not only this all the other shows but abhi is filhas show ke liye to keh sakti hu that mujhe ye show karne ko milta hai because I absolutely love it. I live through these 3 hours and yahi meri hamesha ummeed rehti hai ki jab main isko jee rahi hu to aap bhi saath saath mere jiye. बस वही सारी बातें याद आती हैं. और भी बातें बताऊंगी लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो मस्ती 90s मिक्सटेप का थोड़ा और समय बाकी है, बाकी बातें बिल्कुल बाद में. फिलहाल के लिए 90s के प्लेलिस्ट में वापस से डाइव मारते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर.

0: एज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क आपसे एक बात तो करना चाहूंगी.
1: हैप्पी बर्थडे टू यू.
0: 10 साल sounds like a milestone, लेकिन मेरे लिए it feels like a thousand memories. 10 साल पहले आप जानते हैं, 1st October 2016 को रेडियो मस्ती 24/7 went live. पहला रेडियो चैनल जो कि प्राइवेट, जो कि 24 आवर्स, जो कि बॉलीवुड का, साउथ ईस्ट एशिया का, और जो कि फुली डिजिटल. Can you believe it? We actually have been pioneers. हमें पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होने वाला है. We only knew one thing, that Masti had to continue. And it did. Changing technology, changing times, a pandemic, challenges, reinventions, incredible highs. And some moments, जब giving up शायद थोड़ा सा easier option था, कई बार सोचा था. लेकिन आप रहे हमारे साथ, हमारे लिसनर्स, हमारे क्लाइंट्स, आर पार्टनर्स, आर आर्टिस्ट्स, आर टीम मेंबर्स, पास्ट एंड प्रेजेंट. हर इंसान जिसने विश्वास रखा मस्ती पर, सपोर्ट किया हमें, चैलेंज किया हमें, फोन किया हमें, मैसेज किया हमारे साथ, एडवर्टाइज किया हमारे साथ, आप हंसे, एंड समटाइम्स आपने हमें कंप्लेन भी किया. You became a part of our story, and from radio to Masti AVI, from events and community initiatives to Masti Media Academy, aur ab original content aur productions, aur ab to mera behind the success with Renuka, jo aaj hi launch hua hai, we have kept evolving. But ek aisi cheez jo kabhi nahi badli, wo hai the heart of Masti. When I look back today, I feel proud. I feel grateful, and more than anything else, I feel excited about what comes next. Kyunki 10 saal was never the destination, it was only the beginning. So thank you Singapore, thank you to our listeners around the world, and thank you to everyone who has been a part of this extraordinary journey. To the memories jo humne banaye hain, and to everything still waiting to be created. Main hu Renuka, the founder of Masti Media Network. Happy 10th anniversary humko, aap sabhi ko, of Masti Media 24/7. Keep listening, keep believing, keep the Masti alive. One network, endless possibilities. Thank you from the bottom of my heart.
2: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
3: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन. 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे.
4: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, अंतर आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो. एंड यस, विद दैट आज का ये जो एपिसोड है, ऑलमोस्ट पैकअप का टाइम आ चुका है. भाई बालकनी से बास्केट नीचे गई थी, ग्लास बॉटल का चकफिश, ये वाले साउंड सुने थे. हैंडललेस बाथरूम मग ने प्रूव किया कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी हाँ कभी ना के. यू नो, 5.5 घंटे का फर्स्ट कट जो है वो हमने वहाँ से गुजरे, उस गली से. देन यस बॉस में कंप्लीटली डिफरेंट बॉस हमने इमेजिन किया. डाइनिंग टेबल को लेजेंडरी प्लास्टिक कवर के नीचे से देखा, फ्रिज की लाइट पर अपनी चाइल्डहुड का PhD कंप्लीट किया. सो मेनी थिंग्स राइट. और फिर रेडियो मस्ती का नॉस्टैल्जिया तो डेफिनेटली बिल्कुल था. एंड आज 1st of October, जस्ट इन केस अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं नहीं आज तो सैटरडे है, डेट डिफरेंट है, ऑन कोड सुन रहे हो आप. सो वेल, 1st of October वो नॉस्टैल्जिया तो बनता ही बनता था. हाउ कैन आई स्टॉप माईसेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट. सो नॉर्मली इस शो में मैं इस तरह से 90s का ड्रॉर खोलती हूँ, बट आज थोड़ी देर के लिए अपना ड्रॉर भी खुल गया. एंड दैट्स द फनी थिंग अबाउट टाइम, जब आप किसी फेज को लिव कर रहे होते हो ना, यू नेवर अनाउंस अटेंशन एवरीबडी, ये मेमोरी बन रही है. यू आर जस्ट देयर, यू आर वर्किंग, लाफिंग, रनिंग अराउंड, फिगरिंग थिंग्स आउट. सम डेज आर फैंटास्टिक, सम एब्सोल्यूटली मैड, एंड सम enough years pass and suddenly you realize ki are ye bhi to puri purani yaadon mein se hi ek hai. And maybe that's why I love doing this show so much, because nostalgia is just not only about ek era ke bare mein, it's about the versions of ourselves that lived in that era. The child opening the fridge just to test uski light ko lekar, the teenager humming ek film ka song, the person who walked into workplace for the first time, the person sitting here today remembering all of them, different versions, सेम कहानी. सो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 का बर्थडे, एक लिटल थैंक यू टू एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ आर्स. ये थैंक यू खत्म नहीं होगा, प्लीज ले लो. बार बार आपके पास आएगा, ऑन एयर, बिहाइंड द सीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द अदर साइड ऑफ दिस माइक्रोफोन, बिकॉज रेडियो विदाउट अ लिसनर इज जस्ट साउंड. आप सुनते हो तो वो कनेक्शन बन जाता है. मैं हाँ आपकी 90s वाली अंतरा फिलहाल. दिस वॉज अ लिटल स्लाइटली मोर पर्सनल, स्लाइटली मोर बर्थडे वाला, यू नो, फील होना ही होना है. चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो होगी आपसे मुलाकात वापस से. बाय बाय, टेक केयर.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: कभी दहलीज पर दिए जलाना, कभी जलते दियों को बुझाना, मेरी याद यूं भी तड़पाएगी, तुम बार बार दहलीज पर ना आना। हाँ, शायद किसी को जब बहुत याद किया जाता है तो उन लम्हों में जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि लम्हे वहीं थम गए हैं, वक्त है कि गुजरता ही नहीं। लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो वक्त कहाँ उड़नछू हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। बहुत सारी विशेष के साथ आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त समर आपके अपने फेवरेट शो लेजेंड्स के साथ एक बार फिर से, जहाँ बातें पूरी फिल्मी होती हैं। तो जी, महफिल जमा लेते हैं और बातों का तड़का डालकर मस्त मस्त शो की चाट तैयार करते हैं। और आज की हमारी शो चाट में आज है भेलपुरी। जी, चरपरी, खट्टी मीठी और थोड़ी तीखी। आप कहेंगे, यार समर को क्या हुआ, चाट बाजार कैसे बन गया? सिंगापुर जिंदगी चाट ही तो है, सारे टेस्ट्स का मिक्सचर है। वैसे आज लेजेंड्स पर हम जिनकी बात करने वाले हैं वो भी ना पूरी चाट हैं। ये हैं आशा पारेख, है ना? इनकी आंखों के इशारे, इनकी खिलखिलाती हंसी, मीठी आवाज और डांस, भाई वाह। तो जी सिंगापुर, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और हो जाते हैं आशा जी के साथ। आप सुनते रहिए लेजेंड्स सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर आपके साथ, स्टे कनेक्टेड।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में रहो।
3: सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस। This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti Partner event.
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: बच्चों बताओ, 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है?
7: सारी दुनिया को मालूम है, गांधी जी का।
6: बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आज के शो में हम जिस लेजेंड को लेकर आए हैं, उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को याद है। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूँ समर आपके साथ। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, विच इज सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड्स पर लिविंग लेजेंड आशा पारेख की। हाँ, वही आशा जी जो सजन को जब पुकारती हैं तो सावन झूम कर आ जाता है और कभी बदरा जा जाते हैं। बॉम्बे की एक मिडिल क्लास फैमिली में 2 अक्टूबर 1942 में जन्मी आशा पारेख के पिता प्राणलाल हिंदू और माता सुधा मुस्लिम थी। ये अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और शायद इसीलिए उनकी बहुत ही प्यार और दुलार के साथ परवरिश की गई। आशा अभी बहुत ही छोटी थी, लेकिन उन्होंने एक ख्वाब बुन लिया था। वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि लोगों का इलाज कर सकें। पढ़ने में अच्छी थी और डांसिंग में भी खासी दिलचस्पी थी। एक रोज स्कूल से लौट रही थी कि रोड पर एक्सीडेंट देखा। सड़क पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। बस इतना देखना था कि आशा जी के हाथ पैर कांप गए और डॉक्टर बनने का इरादा उसी वक्त छोड़ दिया। इनके दिल में खून का डर जो बैठ गया था। अब आगे क्या हुआ? हाँ, बताऊंगा, अभी तो बात शुरू हुई है, दास्तान पूरी बाकी है मेरे दोस्त। आप सुन रहे हैं समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां पर चल रहा है आशा पारेख की जिंदगी का सफर। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October tak, Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ.
3: ये गई वो गई सपनों में हो गई आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे बालमा हाय तेरे कारण मेरे साजन कितना प्यारा सा गाना नहीं है और इस गाने को किस पर फिल्माया है ऑफ कोर्स आशा जी पर जो आज की हमारी लेजेंड है वेलकम बैक मैं हूँ समर आपके साथ और आज आशा पारेख जी के बारे में बात कर रहा हूँ वैसे आशा जी की आंखें कितनी खूबसूरत है ना बड़ी बड़ी और उनके डांस का तो मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं यानी समर हाँ तो मैं कह रहा था कि आशा जी को बचपन से ही डांस से बड़ा लगाव था और उनकी मम्मी को भी और शायद इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में ही आशा जी को उन्होंने क्लासिकल डांस की तरफ मोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर डांस सिखाना शुरू कर दिया बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था और वहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत ट्विस्ट हुआ आशा जी एक प्रोग्राम में परफॉर्म कर रही थी खूबसूरत तो वो पहले से ही दिखती थी साथ ही बड़े ही माहिर अंदाज से स्टेज पर वो डांस करती थी इसी प्रोग्राम में मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिमल दा बिमल रॉय भी मौजूद थे उन्होंने आशा जी को वहाँ देखा और कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है डांसिंग पार्ट ही है करोगी छोटी सी आशा सुनकर खुश हो गई और हामी भर दी जानते हैं इस वक्त आशा की उम्र क्या थी महज 10 साल और इस फिल्म का नाम था माँ 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में भी उनके डांस को काफी पसंद किया गया और पता है इसके बाद ही एक और फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया गया कौन सी अरे बताऊंगा भाई पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और हो जाए फिर बातें आशा जी की और भी करेंगे ओके समर है आपके साथ आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो रेडियो मजरूनी 47 लाइव और यहाँ चल रहा है लेजेंड्स आज बात हो रही है आशा पारेख की

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a must-be partnered event.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हीरो बनना तो बड़ा आसान है, बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डांस भी आता हो तो अच्छा है। हीरो तो यूं ही बन जाते हैं चुटकियों में, यूं अक्सर लोग ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में किसी मकाम पर हैं, वो जानते हैं कि यहाँ अपने कदम जमाना कितना मुश्किल का काम है। वेलकम बैक, समर लौट आया है लेकर लेजेंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं आशा पारेख की। हाँ, तो जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि बेबी आशा अब फिल्म की तरफ बढ़ने लगी थी और उन्हें मिल गई दूसरी फिल्म बाप बेटी। 1954 में ये फिल्म आई और इस फिल्म के सभी गाने लता जी ने गाए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से नकार दी गई, फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, लेकिन आशा जी का सफर शुरू हो चुका था। अब वो मुख्तलिफ फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स करने लगी थी, लेकिन असल मंजिल अभी दूर थी। बेबी आशा 16 बरस की हो चुकी थी और एक दिन विजय भट्ट ने इन्हें अप्रोच किया और कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें आशा को एज अ लीड एक्ट्रेस लेना चाहते हैं। आशा को ऑफर अच्छा लगा और उन्होंने हाँ कह दिया। ये फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। अभी शूटिंग के 10 दिन ही गुजरे थे कि विजय भट्ट ने आशा को बुलाया और कहा कि सॉरी, अब तुम फिल्म में नहीं हो। वो क्या है ना कि तुम स्टार मटेरियल नहीं हो। बताइए, जो आने वाले वक्त की स्टार थी, जिनके साथ सभी सुपरस्टार्स काम करना चाहते थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन आशा इससे टूटी नहीं, उनका हौसला खत्म हुआ। वो घर लौट आई और सिर्फ इस बात के 8 दिन बाद नासिर हुसैन की एंट्री हुई उनकी जिंदगी में। हाँ, वही नासिर हुसैन जो आमिर खान के चचा हैं। और आकर उन्होंने कहा, आशा दिल दे के देखो। हाँ, यही कहा। क्यों कहा बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। समर यही है लेजेंड्स के साथ, समर लेजेंड्स वाला आपका इंतजार कर रहा है रेडियो मजी 24/7 लाइव पर, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो। आप सुन रहे हैं, इन खूबसूरत नगमों में डूबकर वापस आइए। इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा मैं।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का
3: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
5: टाइम टू रेज द बार। रम्मा
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
7: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
8: दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, दिल देखे देखो जी. ओ दिल लेने वालों, दिल देना सीखो जी. हाँ, दिल लेने वालों को दिल देना भी आना चाहिए. हाय शम्मी जी मस्ती के साथ ड्रम बजाते हुए और झूम झूम के गाते हुए नजर आ जाते हैं, जैसे आप ये गाना गाते हैं. और साथ में नजर आता है वो पुरानी फिल्म्स का पेटेंट डांसिंग स्टाइल. डांस फ्लोर के दोनों साइड से मेल फीमेल डांसर्स हौले हौले आते हैं, थमकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, और फिर ट्विस्ट करते हैं या रॉक एंड रोल करते हैं. आपने भी गाना जरूर देखा होगा. वेलकम बैक, मैं हूँ समर आपके साथ. और ये गाना दिखा रहा था आपको मैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. हाँ, दिखा रहा था, दिल की आंख से दिखा रहा था. आप महसूस कर रहे होंगे जी, इसी फिल्म दिल देखे देखो का परवाना लेकर नासिर हुसैन पहुंचे थे आशा जी के पास. और आशा जी जो 8 दिन पहले ही एक फिल्म से निकाल दी गई थी, अब इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उन्हें लिया जा रहा था. आपको पता है आशा जी ने क्या कहा? ऑफ कोर्स आशा जी ने हाँ ही कहा. तभी तो फिल्म बनी, फिल्म रिलीज हुई. जी आशा जी ने हामी भर दी और उन्हें उस वक्त के स्टार शम्मी जी के साथ एक बड़ी ही प्यारी सी फिल्म में पेश किया गया. आशा जी कहती हैं कि शम्मी जी जो इस वक्त जाने माने कलाकार थे, मैं उनके साथ थी. ये बात ही मुझे अंदर तक खुश कर रही थी. एक दिन शूटिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन मेकअप आर्टिस्ट आए नहीं थे. तब आशा जी कहती हैं कि शम्मी जी की वाइफ ने मुझे बच्चों की तरह बिठाया और मेरा मेकअप किया. उनको याद करते हुए आशा जी कहती हैं कि वो बहुत अच्छी औरत थी. अरे हाँ, जब दिल देखे देखो रिलीज हुई थी तो फिल्म की बड़ी तारीफ हुई. इसके गाने, इसके सॉन्ग्स, स्टोरी, एक्टिंग लोगों ने बहुत पसंद की और खास तौर पर इस नई लड़की की भी बड़ी तारीफ हुई. और तो और, क्योंकि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक और सितारा दे दिया था जो अपनी चमक बिखेरने के लिए बेकरार था. अरे हाँ, इस फिल्म के बाद शम्मी जी और आशा जी की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और नासिर हुसैन साहब के साथ एक टीम बन गई. अरे जी, ये साथ तो अभी दूर तक का था. आशा जी ने नासिर साहब के साथ तकरीबन 7 फिल्मों में काम किया और सभी अमेजिंग. फिलहाल अमेजिंग गाने तो इस म्यूजिकल ब्रेक में भी आ रहे हैं, तो चलिए मिलकर एंजॉय कर लेते हैं इन गानों को. आप सुनते रहिए लेजेंड्स, समर लेजेंड्स वाला के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: जब प्यार किसी से होता है, बताइए किसकी फिल्म है ये? मैं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मजरू 24/7 लाइव पर। आप कहेंगे सल्लू भाई की फिल्म है, अरे हाँ माना, लेकिन इस टाइटल की एक फिल्म 1961 में आ चुकी थी और उसकी एक्ट्रेस थी आशा जी, यानी हमारी आज की लेजेंड आशा पारेख, और उनके साथ थे हमारे हर दिल अजीज एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब। मुझे इस फिल्म का एक गाना इंतहाई पसंद है, ये फिल्म भी थी आशा जी के साथ नासिर हुसैन की। नासिर हुसैन की फिल्म्स में एक चीज जो अब कॉमन हो चली थी वो थी आशा जी, आशा पारेख। दो बेहतरीन म्यूजिक और तीन शानदार स्टोरी थीम, और इन्हीं के साथ आशा जी की इमेज भी टॉम बॉय, स्टाइलिश और बबली सी बन गई थी इन फिल्म्स में। फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां, ये फिल्में काबिले जिक्र हैं। वहीं 1984 में फिल्म मंजिल मंजिल में एक कैमियो में आशा जी ने काम किया, और अब आशा जी को बड़े बड़े बैनर्स की फिल्म्स मिल रही थी, उनके स्टाइल स्टेटमेंट से लोग प्रभावित हो रहे थे, लड़कियां उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगी थी, उनकी तरह से साड़ियां पहनने का फैशन शुरू हो चुका था। शम्मी जी के साथ साथ पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, धर्मेंद्र, शशि कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार के साथ भी उन्होंने कई बड़ी फिल्म्स में काम किया और इतनी शोहरत हासिल कर ली कि वो एक सितारा बन गई। और ये वक्त अभी 1970 तक का ही था, अभी तो कई फिल्में आनी बाकी थीं। अच्छा हाँ, एक सुपरस्टार थे जिनके साथ आशा जी ने एक भी फिल्म नहीं की, आप जानते हैं कौन थे वो? नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक और ले लेते हैं। आप इसे जल्दी से सुनकर वापस आइए, मैं यहीं आपका मंतजर हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। समर लेजेंड्स वाला है मेरा नाम, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो 24/7 लाइव पर, दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो, स्टे कनेक्टेड।
0: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Masti Partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर लेजेंड्स वाला और एक बार फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं ले आया हूँ आशा पारेख की कहानी। मैंने जिक्र किया 1970 की फिल्म तक का। अभी तक आशा जी जो कि दिल बहलाने के रोल कर रही थी, लेकिन फिल्म दो बदन के लिए कास्ट किया और इस फिल्म ने आशा जी की संजीदा एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया और उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई थी। चिराग, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वहीं शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का और कटी पतंग ने आशा जी को हर दिल की आवाज बना दिया था। फिल्म्स के गीत, उनकी एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, मेकअप, उनका देखने का अंदाज, उनकी चाल, गांव की गोरी वाले कैरेक्टर से लेकर शहर की लड़की तक हर रोल में वो परफेक्ट फिट हो रही थी। कटी पतंग तो उनके करियर का सूरज हो गई थी जो बहुत रोशन थी। पहले फिल्म कटी पतंग में शर्मिला जी को कास्ट किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बस इसी वजह से शक्तिदा ने आशा जी को साइन किया और इसी फिल्म के लिए आशा जी को अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इस दौर में ही आशा जी को जुबली गर्ल का खिताब भी मिला, क्योंकि उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली तो जरूर मनाती थी, वहीं उनके कई खास डांस स्टेप्स तो लोगों ने चुरा लिए थे और उनकी मिमिक्री भी खूब की जाती थी। ये उनकी शोहरत का ही नतीजा था। आशा पारेख ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि कई गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और पंजाबी फिल्म में तो वो दारा सिंह के साथ नजर आई थी। वाह, सोचिए इतनी सी आशा जी और दारा सिंह। अरे हाँ, एक और बात, आशा जी ने शादी नहीं की। क्यों? बताऊंगा ना, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और हो जाए, उसके बाद बताऊंगा। और हाँ, साथ ही 3 बेस्ट फिल्म्स का भी जिक्र करूंगा, तो जल्दी से आइएगा। समर लेजेंड्स वाला आपका इंतजार कर रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सिंगापुर सुनते रहिए।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, समर लेजेंड्स वाला एक बार फिर से लौट आया है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सिंगापुर में आपको बता रहा था कि आशा जी ने कभी शादी नहीं की। आशा जी को कोई बहुत पसंद था और उन्हें किसी से मोहब्बत भी हुई थी, लेकिन जाने क्यों बात शादी तक नहीं बढ़ी और मोहब्बत यूं ही खत्म हो गई। कई साल तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली आशा जी के दिल पर जाने क्यों किसी ने दस्तक ही नहीं दी। शायद किसी ने दस्तक भी दी हो, लेकिन आशा जी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। नासिर हुसैन साहब के साथ भी आशा जी का नाम जुड़ा, लेकिन नासिर हुसैन जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थे, वो अपने उस रिश्ते को तोड़कर आशा जी के साथ नहीं आए और शायद इसीलिए आज तक आशा जी ने शादी नहीं की। आशा जी कहते हैं कि जिंदगी में तन्हा रहना कोई बुरी बात नहीं है, बस आपके पास जिंदगी के लिए एक अच्छा नजरिया होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए। आशा जी ने अपने फिल्मी करियर में 90 फिल्म्स में काम किया और बेहद सलाहियत के साथ, लेकिन उनकी अगर 3 बेस्ट फिल्म्स की बात की जाए तो उन्हें चुनने में बड़ी मेहनत लगी मुझे, लेकिन समर मेहनत से कहां डरता है। तो चलिए एक मंत्र पढ़ते हैं और ढूंढते हैं उनकी इन 3 फिल्म्स को। गिलगिलिया खाऊं छू ओम फट, क्या पहली फिल्म मेरे हिसाब से निकली है कटी पतंग, दूसरी फिल्म कारवां और तीसरी फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये तीनों ही फिल्म्स मुझे तो बेहद पसंद हैं और तीनों का जॉनर भी बिल्कुल अलग तरह का है। वैसे अगर आशा पारेख की फिल्मों की बात की जाए तो उनकी ब्यूटीफुल फिल्म्स में घराना, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, आया सावन झूम की, लव इन टोक्यो, आए दिन बहार की, उपकार, महल, आन मिलो सजना, पगला कहीं का, चिराग, कालिया, बुलंदी, ये भी काबिले जिक्र हैं। अच्छा, एक वक्त के बाद उन्होंने लीड रोल्स करना बंद कर दिया और हीरोइन से हटकर माँ और भाभी के रोल किए और उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन फिल्मी दुनिया छोड़ी नहीं बल्कि अब अपने हाथों में फिल्मों की कैंची ले ली। हाँ सच्ची, कौन सी कैंची, बताऊंगा, लेकिन पहले ये कुछ कहानी और हो जाए। आप सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर लेजेंड्स वाला को। आज कहानी सुना रहा हूँ मैं आशा पारेख की। स्टे कनेक्टेड।

0: India tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। मैं हूं समर लेजेंड्स वाला और आज कहानी आशा पारेख की। धर्मपाजी के साथ आशा जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। दोनों की फिल्म्स और सॉन्ग्स लोगों की जुबान पर चढ़े हुए थे, लेकिन आशा जी कहती हैं कि मेरी हर हीरो हीरोइन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ खूब बनती थी, और अब जबकि मैं फिल्मों से दूर हो चुकी हूं, तो अब मेरी एक सो कॉल्ड गर्ल्स गैंग है, हेलेन, वहीदा रहमान, शम्मी और आशा जी। ये सब मिलकर खूब पार्टी करती हैं, घूमती हैं और चैरिटी भी करती हैं। बचपन में आशा जी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की आशा पारेख हॉस्पिटल खोलकर। अरे हाँ, जाने से पहले मैं बता रहा था कि कैंची उनके हाथ में आ गई। 1994 से 2000 तक आशा पारेख सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रहीं। वहीं एक ड्रामा एकेडमी उन्होंने खोली और साथ ही आशा जी ने अपना एक टीवी सीरियल प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसने कई सीरियल्स बनाए जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया। आशा जी को मिले अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले, जिनमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड पद्मश्री मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, लिविंग लेजेंड्स अवार्ड उन्हें मिला, गुजरात फिल्म अवार्ड, भीष्म अवार्ड, अरे बाप रे, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जिस स्टेचर की वो कलाकार हैं, जिस खत की वो कलाकार हैं, उसके हिसाब से ये अवार्ड्स कम ही हैं। बहरहाल ये बात जानने वाली है कि उनके काम में कभी कोई कमी नहीं रही और उनके गाने माशाल्लाह जबरदस्त हिट होते थे। तो कुछ गाने हो जाएं, आप सुनते रहिए लेजेंड्स सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। ये गाने सुनिए और वापस आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं हूँ समर लेजेंड्स वाला, स्टे कनेक्टेड।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आपको पता है आशा जी की एक फिल्म आई थी राखी और हथकड़ी 1972 में, और फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि अब तक जो भी फिल्में रिलीज हो रही थी वो ज्यादातर जुबली मना रही थी, हिट हो रही थी। लेकिन ये फिल्म रिलीज के पांचवे दिन ही सिनेमाघरों से उतर गई और इस वक्त की ये सबसे बड़ी फ्लॉप थी। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, जहां बातें पूरी फिल्मी हैं। रेडियो मसी 24/7 लाइव है, ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने सभी के साथ काम किया लेकिन आशा जी के साथ काम नहीं कर पाया मैं। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी आशा पारेख के एक बार संबंध खराब हो गए थे और जब इन दोनों की बातचीत बंद हो गई थी तो उन्होंने पहल करके उस बातचीत को फिर से शुरू किया। अपने दौर की हाईएस्ट पेड हीरोइन रही आशा जी, बावजूद इसके आशा जी में कभी गुरूर नहीं आया। विजय आनंद जो कि अपने जमाने के बड़े डायरेक्टर रहे वो कहते थे कि मुझे आशा का शरारती अंदाज बड़ा पसंद है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारा आज का शो और गाने पसंद जरूर आए होंगे। वैसे एक बात है, लेजेंड्स की बातें करते करते मैं भी बहुत कुछ जान गया हूँ, वो भी जिनसे मैं अभी तक अनजान था। शुरू हो गई मेरी हीरो बनती। लेकिन आप गानों को एंजॉय करते रहिए और मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराहट टैक्स फ्री है। फिर से लौट कर आऊंगा एक और शो के साथ, तब तक सुनते रहिए लेजेंड्स। अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। फिर मिलते हैं।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है। सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

गल है जी, यादों पर अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Antara, aankh aur aankh, do aankhein. Aankh mare ulad ki, aankh mare, kya khayal hai?
0: Setting the perfect hot temperature for...
1: Good morning, Gandhi Jayanti ki bahut bahut shubhkamnaen. Ji haan, bilkul, Bapu hue hain. Aur yahan par Antara ji smile kar rahi hai. Kuch to kehna chahti hain ye. Bataiye, aap bol dijiye bas.
2: पूरे प्लैनेट में एक आई थिंक फ्राइडे वाला ये शो है जब हम सुबह सुबह आकर गांधी जयंती पे ऐसे सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर अखबार यहाँ पे चार आंखें जो है बिल्कुल खुलने की कोशिश कर रही है फिलहाल फ्राइडे मॉर्निंग को 2 अक्टूबर के. और वैसे भी आई थिंक मोर अब ये ऐसा हो गया है कि देखो गांधी जयंती तो है ही है लेकिन हम सभी को पता है ना कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था.
1: जी बिल्कुल, पाव भाजी खाने के लिए गए थे हम, सत्संग पे गए थे और आज भी हम बिल्कुल पाव भाजी खाएंगे और उसी के साथ में बेकाबू हो जाएंगे. जानती हो ना ये कौन सा गाना है या नहीं जानती हो? बेकाबू, बेकाबू होने का टाइम आ चुका है. जी हाँ बिल्कुल, 7:07 हुए हैं यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर, आपका फेवरेट शो जहाँ पर आप ही की जैसी बातें होती हैं गंदी गंदी. सुनने के लिए तैयार पूरे 10 बजे तक. दिस इज रेणुका विद यू एंड ऑफ कोर्स साथ ही में हमारे हैं आरजे अंतारा इन द हाउस.
2: पूरा नाम अचानक से

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हाँ तो भाई, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर. चल रहा है आपका और हमारा फेवरेट वाला शो जिसे कहते हैं मस्ती मैडनेस.
0: फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: फंकीएस्ट. बताओ बताओ, हमने तो ये बात ही नहीं करी कि सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर भी आ गया. ऐसे कैसे?
1: पावन पावन महीना.
2: Now finally, it feels like home.
1: Yeah. Finally, the pavanest महीना of the साल is here. जी हाँ, बिल्कुल अक्टूबर का महीना आ चुका है. अब क्या ही कहें उसके बारे में. बड़े बड़े महान महान किस्म के लोग आज देखिए ना, आप गांधी जयंती से ही शुरुआत कर लेते हैं और बस इसके बाद तो लाइन ही लग जाएगी. पर फिलहाल के लिए वो तो आप छोड़िए अंतरा जी, बस 10-11 दिन की बात है, फिर सबसे पावनेस्ट डे भी आ जाएगा ऑफ दिस मंथ. बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ज्यादा परेशानी है अंतरा जी, कि कल हम सब लोगों ने मिलके कुछ उनको पार्टी नहीं दी ना. हमने कोई केक वेक काटा ना, हमने कुछ किया. भाई मतलब खुश नहीं है वो इस बात से, बिल्कुल भी खुश नहीं है. तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम तो हेड ऑफ प्रोग्रामिंग हो, तुम बताओ तुमने क्यों नहीं किया ऐसा?
2: हाँ नहीं, मेरे को जिसने पूछा, मैंने सभी से ये कहा कि इतने साल हो गए हम सिर्फ देते देते आ रहे हैं, हमें कुछ मिला तो है नहीं. तो इस बार हमने डिसाइड किया अपने अपने में ही जो है, हम एक दूसरे को छुट्टी देंगे, हम एक दूसरे को पार्टी देंगे, सिर्फ अपना अपना अपना सब कोई देखेगा, क्योंकि अब दिस इज द टाइम व्हेन पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अस.
1: मुझे टोटली एग्री है ये बात. देखो फिर भी हमने मेहनत करी, क्योंकि
2: आई नो द पॉइंट इज कैसे रह नहीं पाएंगे हम,
1: कि हर पार्टी पर म्यूजिक होना जरूरी होता है. तो तुम घर पे पार्टी कर रहे थे तो म्यूजिक तो हम ही दे रहे थे ना तुमको. तो भाई नाचो नाचो. जी हाँ, हम 10 साल के हो चुके हैं, नाचो 24/7. हाय हाय, मेरे को तो सीरियसली अंतरा, आई टेल यू, मुझे वो वाला दिन याद आ रहा है जब मुझे लोगों ने ये कहा था तुम पागल हो चुकी हो, ये कर क्या रही हो, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना.
2: And I also remember the moment जब हम लोगों ने कहा चलो करते हैं, देखा जाएगा.
1: We'll talk more about that, क्योंकि हमने आपस में बातें कहाँ करी हैं इसके बारे में. Radio Masti 24/7, जी हाँ, absolutely live. यहाँ पर अंतरा और रेनुका, this is Masti Madness.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर. अंतरा जी कह रही हैं मैं बताऊंगी, मेरी न्यूज़ है, मैं ही बताऊंगी. बताओ.
0: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे.
2: जब जब ऐसा हुआ है तब तब ये इन्होंने खुद ही बताया है. मैंने इनको कुछ नहीं बताया, खुद से ही बता दिया. बट लिसन टू दिस. ओके रेणुका, हाउ अबाउट जिस ऐसे अगर मैं आपको ये चीज बताऊं तो आपको बहुत ही एक अलग सा फैंटेसी टाइप लगेगा.
1: क्या?
2: सो हाउ अबाउट समवन मेक्स यू एंड ट्रीट्स यू लाइक अ कबाब.
1: कबाब?
2: हाँ, वो जो रोल्स आते हैं ना, कबाब वाले रोल्स. एक एक रैप होता है, उसके अंदर आप उसमें कबाब डालते हो और फिर उसको रैप करके उसपे सॉसेस डालते हो एंड देन यू गेट. बट देन instead of the kebab it's you who's wrapped in the burrito and everything. how that sounds nice, right?
1: No babe, it all depends on who I'm being served to. Okay, that's what it depends on. Come on, kill the suspense, tell me.
2: Oh god, so I don't know what kind of trends are going on in the market. Bhai 600 pound kama rahe log ye karke. He's called a some D daddy. Okay.
1: Achha.
2: Now this man, what he does is ki iske paas log jaate hain ki hum kebab banna chahte hain. So they go, they lie down in this huge tortilla wrap which this guy has made. Then they go and lie down inside that tortilla wrap as a kebab and then this guy pours all the ketchup sauce and everything.
1: But yaar ye jo ये जो टोर्टियाज रहते हैं टेबल पे, इनके ऊपर वो बंदा लेट जाता है और फिर उसके बाद केचप. ओके, एंड देन दे रैप द टोर्टियाज. ओके, गो ऑन.
2: या सो बेसिकली दैट गाय हु इज बीइंग द कबाब इज हैविंग फन. ओ पुट मोर सॉस, पुट मोर, ऐसे करके.
1: अच्छा, फिर वो एकदम वेट वाली फीलिंग के साथ में सर्व होता है.
2: यस.
1: यार ये क्या है? व्हाट इज दिस?
2: आई हैव नो आइडिया. व्हाट इज 600 पाउंड्स? लिसन टू द अमाउंट. 600 पाउंड.
1: चाटता कौन है?
3: ये तुमने क्या कभी
1: सोचा है? अंतरा सोच रही है अभी फिलहाल. शायद इसने सोच लिया है. आई थिंक इसका जवाब मैं ऑफर ले लेती हूँ. नहीं नहीं अंतरा वेट
2: है ना, मत लो अभी, मत लो, सुना नहीं जाएगा.

0: भाई ऐसा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके क्रिएटिविटी दिखाने के, रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारा तरीका है आप तक ये वाला शो पहुंचाने का, मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंतारा,
1: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेंपरेचर।
2: बिल्कुल, और क्रिएटिविटी कब से पहुंचाते हुए आ रहे हैं आपको कि अलग ही हाइट्स पे पहुंच चुकी है हमारी क्रिएटिविटी। अब कौन सा क्रिएटिव खबर लाई है रेणुका बताएंगी।
0: भाई अगर दुनिया में क्रिएटिविटी ना हो तो ये शो भी ना हो, राइट? व्हाट डू यू थिंक?
2: करेक्ट।
0: तो एक प्रमोशनल फिक्स डिपॉजिट का एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में मैं पिछले हफ्ते एक्चुअली बात करना चाह रही थी, रह गया। ये बाय थिरुवल्लुवर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इट इज THECOS, और ये है चेन्नई में, ठीक है? और चेन्नई मेट्रो में ये वाली एड लगी हुई थी, एंड द एड का टेक्स्ट वॉज, गर्लफ्रेंड मे गिव 0% इंटरेस्ट बट आवर FD गिव्स 14.4%। ओके,
2: अच्छा,
0: अंतरा इज लाफिंग बट आई नो तू दो मिनट के बाद में इसके अंदर से जो फूल निकलेंगे वो मुझे पता है।
2: जी हाँ जी, मैं रेडी हूँ।
0: हाँ, तो पॉइंट ये है कि भैया तुमको अगर अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाई फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स बोलने भी हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल एंड सिली ह्यूमर इज दिस, राइट? सो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि भाई ये ऑब्जेक्टिफाई करता है औरतों को, एंड ऑफ कोर्स इट रिड्यूसेस द ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड साथ ही साथ में सेक्सिस्ट स्टेरियोटाइप्स इन पब्लिक spaces, which is true in my view as well. तो भाई फिर political पार्टियां खड़ी हो गई कि नहीं, औरतों को कैसे तुमने हाथ लगाया, कैसे बोला कुछ, strict legal action लो, ये वो, लेकिन किया कुछ नहीं हुआ उस कंपनी का, कुछ नहीं हुआ किसी का भी। तुम्हारा क्या ख्याल है?

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: ये नंबर आपको याद रखना है
3: 526.
4: अमिताभ बच्चन का तो 786 था 786. हेलो गुड मॉर्निंग और रेडियो मस्ती 24/7 पर गोइंग फुल टू फिल्मी राइट नाउ. क्या क्यों याद करना है ये 586 भाई?
2: ये तो इन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया, इनको बस दो ही नंबर याद है, 1 और 3 बस. इस महीने इनको इस नंबर के अलावा कुछ ना याद होगा और किसी और को याद भी नहीं होना चाहिए, है ना? सो वेल कमिंग टू 526. अब आप सोचो कि आप अपने 7 साल के बच्चे का सूजा हुआ चेहरा देखकर डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब देखो क्यों इसका इतना स्वेलिंग क्यों हो रखा है इधर जॉ के साइड में एंड एवरीथिंग. नाउ 7 साल का बच्चा, ठीक है, एंड द डॉक्टर ओपन होकर बेटा जरा मुंह खोलना. मुंह जब खोला तो उसके अंदर मिले 526 छोटे छोटे छोटे छोटे दांत. 526 दांत.
4: 526 दांत क्या हो गया? इतने दांतों का क्या करने वाले? क्या सारी दुनिया के बदल डालूंगा? क्या हुआ? क्या
2: भाई 5 घंटे का पूरा सर्जरी चला टू टेक आउट टेक देम आउट एंड एवरीथिंग इज ऑन द लोअर जॉ, नथिंग ऑन अपर.
4: कौन है ये
2: 526? मेरा सवाल था कि भाई 7 साल लग गए तुमको डिस्कवर करने में, बेचारा बच्चा. आई मीन जब तक वो लाइक व्हाट वर यू वेटिंग फॉर? And they have literally shown in the picture like the after taking out all the 526 दांत बाहर निकाल कर और कैसा उसके ओके ऐसी भी चीजें होती हैं.
4: 26 दांत, मैं तो वेल का मुंह सोच रही हूँ कि किस तरह से छोटे छोटे छोटे छोटे इतने सारे वाले दांत होते हैं. बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग, पहली बात तो इतने सारे दांत अंदर फिट कैसे आए, दूसरी बात वो बच्चा, वो बोलते होंगे नहीं बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, उसके दांत निकल रहे हैं ना, दांत निकल रहे, निकलते ही जा रहे हैं, 7 साल तक दांत ही निकलते जा रहे हैं, मतलब है नहीं. बट ओके ऑनेस्टली दैट्स सैड, दैट्स रियली सैड.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे दूसरे घंटे में। खैर, पिछले घंटे को खत्म करते करते 526 दांतों की बात करी हमारी अंतरा जी ने, तो हमने कहा जहां एक तरफ 526 दांत वहां दूसरी तरफ एक ही दांत काफी है। जी हाँ, तो लेकर आए हम इस एक दांत की कहानी मस्ती मैडनेस पर 8 बजने के उस पार।
1: इसी बात पे दांत देते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: और दांत मत दे यार, 527 हो जाएंगे उस इंसान के। टेरिबल, हर चीज में मजाक बना लेती हैं ये लड़कियां, सीरियसली नहीं होती। 26 साल का ये आदमी, ठीक है, पहुंच गया एक डेंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा दर्द दांत में लेके। अब क्या है कि जब डेंटिस्ट ने उसके मुंह के अंदर घुस के देखा तो पीछे के एक दांत में एक छोटा सा पेड़ उग रहा था। लाइक सच का वो स्प्राउट होता है ना, जैसे जब तुम स्प्राउट्स को पानी में डालते हो फिर उनका एक पौधा सा निकल आता है, यू नो व्हाट आई मीन। सो बेसिकली इसने खाया था अमरूद, आप भी खाते होंगे जरूर, ठीक है।
1: What?
0: और अमरूद का एक बीज जो कि उसके दांत में अटक गया था उसमें से एक्चुअली हरे रंग का पत्ता निकल पड़ा है, ठीक है। इट्स एक्चुअली स्प्राउटिंग इनसाइड एंड द दांत इज टोटली, इट्स टोटली डीकेइंग। तो उसने कहा भाई मेरे को ना थोड़ा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इनफैक्ट। तो जब उसने देखा तो वो दो छोटे छोटे पत्ते भी निकल रहे थे, मतलब इट वॉज एक्चुअली ग्रोइंग। सो यू कैन इमेजिन कि वार्म मॉइस्ट एनवायरमेंट जो होता है मुंह के अंदर, वहां पर सीड को तो मिल गया घर। और उसने कहा चलो भाई सही है
1: तेरी।
0: हाँ, तो वो खाना खाता जा रहा इतने दिनों से, लेकिन ये पेड़ उग गया। हाँ,
1: मम्मियों के बात नहीं सच हो गई, वो कहते ना बीजा मत खाओ पेड़ उग जाएगा, पेड़ में से दांत में से निकल आया।
0: लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है इनके साथ। कैसा उफ,
2: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
0: सो दांतों ने कहा स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, आओ चाहे बीज आए चाहे माल आए, हम सब यही रख लेंगे,
1: सब यही रख लेंगे।
0: टेरेबल टेरेबल टेरेबल। गुड मॉर्निंग,
3: you're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime anywhere.

birthday, Jay.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Good morning once again and welcome back. Radio Masti 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस. मस्ती मैडनेस में सुबह से हमने दांतों की इतनी बातें कर ली हैं कि I hope we'll start talking about some other body part now. क्यों भाई, करें क्या?
0: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: हाँ जी, चलो बहुत ही essential body part की बात करते हैं. Reproductive organs का कैसा रहेगा?
1: Oh no. ये भी, what did I ask for? इस समय मुझे कुछ $100 billion मांगने चाहिए थे, जो मांगा मिल गया मुझे. उफ, क्या बताऊं.
2: बिल्कुल. सो भाई, साउथ फ्लोरिडा की ये एक मम्मी है, ठीक है. इन्होंने दिया है, अभी ताजा बच्चा पैदा किया, ठीक है. अब दोनों मियां बीवी जो है, दे आर वाइट बट द किड इज ब्लैक.
1: ओके,
2: सो पूछा गया कि मतलब why do you think, but with very much confidence she is like कि ऐसा होता है, because all through the pregnancy a lot of coffee intake was there, lot of black coffee intake was
1: there.
2: So because of that black coffee the kid also turned out to be black. कहानी में twist अभी भी है मेरे दोस्त.
1: Logical.
2: It is not that she drank the black coffee. It is the husband who drank black coffee all through 9 months and is wajah se to bachcha jo hai black.
1: ये वाला लॉजिक तो हमारे मम्मी डैडी के लॉजिक से भी अलग है. दे यूज्ड टू से चाय पियोगे तो काले हो जाओगे. ये नहीं बोला कि बेटा अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाय पिएगा तो तुम्हारे बच्चे काले पैदा होंगे. इतनी दूर की तो सोच ही नहीं.
2: आप इसकी बायो देख रहे हो, देखो साइंस के हिसाब से अकल तो पूरी लगाई है इसने.
1: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस में भी घुस गई आजकल लगता है.
2: आई नो.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई ऐसा है कि दुनिया भर में फॉर सम रीजन इंडियन आदमियों की बुराइयां करने में सब आगे रहते हैं, सब के सब. अब देखिए, अब इटालियन आदमी का क्या कहना है जिसका इंस्टाग्राम हाल ही में एक पोस्ट टोटली वायरल हुआ है, एंड उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे.
2: कौन है वो, कौन है वो, किस बात पे वायरल हुआ है, मुझे जानना है, क्योंकि आजकल सब किसी बात पे तो वायरल हो ही रहे.
1: सो ये इटालियन मैन जो है ना, वो हम सभी औरतों के मन में टोटली उतरना चाहता है. तो उसने क्या किया, उसने इंडियन आदमियों की बुराई करनी शुरू कर दी. पूछो भाई, तेरे से क्या लेना देना. तो कहता है कि जो इंडियन आदमी होते हैं ना, दे मैरी प्राइमरली टू अवॉइड कोई भी घर का काम एंड एक्सपेक्ट कि उनकी बीवियां सब हैंडल करेंगी सारे डोमेस्टिक काम. ठीक है, सो बेसिकली इसने ये वीडियो जब बना के इंस्टाग्राम पे डाला तो बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट होने लग गया सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली. और उसके बाद डिबेट शुरू हो गई ऑनलाइन कि भाई जेंडर रोल्स क्या है, कल्चरल एक्सपेक्टेशन क्या है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मतलब द वे ही इज सेइंग वेरी ब्लंटली, दे मैरी यू टू अवॉइड हाउसवर्क, क्योंकि उनके कपड़े इधर उधर गिरे रहते हैं, वो मेस करते हैं, सफाई भी नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं टाइप. और ऑटोमेटिकली जो उनकी बीवियां हैं वो सब कुछ करती हैं. तेरा इसके बारे में क्या कहना है बिफोर आई से व्हाट आई वांट टू से.
2: या दिस हिम बीइंग सेइंग एज अ मैन जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि खुद वो कैसे रह रहा होगा.
1: हाँ एग्जैक्टली. और मुझे लगता है इसको भी नहीं पता है कि आजकल की इंडियन औरतें कैसी हो गई हैं. ये हमारी मम्मियों तक के जमाने तक ही है, मुझे लगता है ये इस जमाने में पहुंचा ही नहीं है.
2: Also the fact that हमारा केस कुछ ऐसा हो जाता है रेणुका, नहीं कि जैसे भाई बहन में होता है कि खुद तो एक दूसरे से लड़ मरेंगे, लेकिन कोई बाहर का अगर आ गया, कह दिया, कैसे कह दिया तुमने.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल, बट इटालियन क्यों बोल रहा है.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: ये जो साइड में खड़े होकर कलेश देखने का जो एंटरटेनमेंट है जो लोग लेते हैं वो भी एक अलग ही एंटरटेनमेंट है.
0: Setting the perfect hot temperature.
2: भाई आजकल तो ये होता है कि बंदा सामने डूब रहा है, किसी का घर जल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पर साइड पे खड़े होके कैमरा निकाल के जो मजे लेते हैं लोग, ओए होए होए होए. रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ यहाँ पर. मेरा नाम है रेणुका और साथ में है अंथारा. और अंथारा जी हंस रही है, क्या बात है अंथारा, इतने हंसने की क्या बात है, मजे ले रही हो तुम?
3: मजे नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इस लड़के ने लिखा हुआ है, ठीक है, इसने उस पे डाला हुआ है रिव्यू के तौर पे डाला हुआ है अपने जिम में, कैसे दो लड़कों के बीच में कैसे कैसी चीजें जो है डिस्क्लोज हुई और कैसे हुई. कभी कभी जिंदगी का पता नहीं, अजीब अजीब से चीजें अचानक से ऐसी ही जगहों पे आपके सारे सीक्रेट्स खुल जाते हैं. सो लिखा है कि ग्रेट जिम, वेरी एंटरटेनिंग, रोज कलेश देखने को मिलता है यहाँ पे. कल तो यहाँ क्या तगड़ी लड़ाई हुई दो लड़कों के बीच. Two men came to gym, saw that they have same exact protein shaker. ठीक है, with the same gems on them, और दोनों पे सायाली नाम लिखा हुआ था. दोनों ने बात की, शेकर्स देखे तो पता लगा कि दोनों की गर्लफ्रेंड जो है ये सेम ही लड़की है. फिर उन्होंने वॉलपेपर एक दूसरे दिखाए, सेम ही लड़की है. उनका चाट यकीन पे बदल गया. पहले तो इनका कलेश हुआ, फिर पूरे जिम को ब्रेकअप प्लेलिस्ट पे एक्सरसाइज कराया इन दोनों ने. कल जाएंगे उसके कॉलेज उसको कन्फ्रंट करने. लास्ट में लाइन लिखी है, सयाली बहन तू बच के रही हो.
2: तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड सेम है, लेकिन फिर तुम उसके बाद जिम में अपना वर्कआउट बंद नहीं करते हो, तुम ब्रेकअप प्लेलिस्ट, हाँ ब्रेकअप के प्लेलिस्ट पे तुम सबको करवाते हो वर्कआउट, विच इज लाइक सो डेडिकेटेड. आई लव दैट.
3: आई नो,
2: वेरी नाइस. भाई जेन जी पे तो मेरा ना वैसे ही दिल आया हुआ है, पूछो मत.
3: आई स्वेयर
2: मुझे लगता है कभी कभी मेरी जिंदगी भी जी रहे हैं वो.

0: जान जाए पर वचन ना जाए। अगर एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को डंप कर देती है तो वो ये बिल्कुल तैयार रहे कि बेटा वो जब बदला लेगा तो फिर कहर मच जाएगा, कहर।
1: फ्राइडे मॉर्निंग्स
2: बदले की कहानी लेकर आ गई है।

0: ओके ओके, इतनी भी एक्साइटमेंट की बात नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें एक बात बताते हैं भाई, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC का एग्जाम पेपर हुआ लीक, ठीक है। और जो एक एक्स बॉयफ्रेंड है उसने रिपोर्ट कर दी चीटिंग,
1: ओके,
0: क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप कर दिया था। ओके, सो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा कि बंदी ने अपने बॉयफ्रेंड को बोला बस हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन ब्रेकअप से पहले उसने उसको ये बताया था कि उसके पास पेपर है, ठीक है,
1: ओके,
0: जो कि MPSC का पेपर था। अब जैसे उसने ब्रेकअप किया तो जाके बॉयफ्रेंड ने बता दिया कि ये पेपर तो पहले से उसके पास था, लीक्ड था, तो पूरा का पूरा जो एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप। कितने लोग सीरियसली, सो ये टोटली विसल ब्लोअर बन गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताया कि भाई उसके पास था, प्रूफ भी था, क्योंकि वो सारी जो डिस्कशन हुई थी उनकी कि ये रहा पेपर एंड ऑल दैट, उसके बाद 6 लोग भी मतलब अरेस्ट हो गए, उसके बाद एग्जाम भी कैंसिल हो गया एज अ सेड। सो ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि उस औरत ने उसको छोड़ने का डिसीजन ले लिया। कैन यू बिलीव, उसने पूरे देश से बदला लिया, नॉट ओनली विद,
1: आई नो, हां, एक ब्रेकअप सिर्फ उस पे नहीं, कितनों पे भारी पड़ा।
0: The worst is कि उस लड़की का रैंक भी आ गया था ऑल स्टेट में 7th, क्योंकि अभी भी पेपर भी हाथ में था तब भी 7th आया था, सोच अगर नहीं होता तो क्या। सावन में लग गई आग दिल मेरा भाई, एग्जाम के आसपास ब्रेकअप मत करो, एग्जाम के आसपास,
1: हाँ टाइमिंग थोड़ा सा देख लिया करो।
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: भाई तीसरे घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं बहुत ही क्या कमाल खबर लेके आई हूँ। किसने इंक्लूडिंग मी ऑल्सो ये 80s वाला ट्रेंड जो बीच में हवा आई थी उसमें साथ दिया।
1: ओह नो, मैंने बिल्कुल नहीं दिया। नो वे,
2: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे।
1: क्या है ये, क्या है ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है लोगों की कि एक ट्रेंड शुरू होता है?
0: लेट मी टेल यू, मैंने रेणुका की निकाली थी और शी वाज लुकिंग लाइक माधुरी दीक्षित। पहले तो मुझे देखा लगा कि मैंने कहा ये माधुरी दीक्षित बन के क्यों आ गए, फिर लगा नहीं यार इन्होंने तो माधुरी बना दिया इनको।
1: बस इसीलिए मेरे को पसंद था वो, मुझे काफी पसंद था वो ट्रेंड। Morning, it's Musty Madness and of course it's Renuka Anantra. It's a beautiful Friday और यहाँ पर non-Bollywood बातें होती हैं सिर्फ और सिर्फ। क्यों अंतरा होती है?
0: हाँ जी, non-Bollywood बातें ही होंगी यहाँ पर। मध्य प्रदेश उज्जैन की बात लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एक बंदी, ठीक है, who stole a necklace एक ज्वेलर के यहाँ से काफी लाइक 20-25 साल पहले, ठीक है। बाद में इसने चोरी वोरी करके अपना नाम बदल दिया, बट पकड़ी कैसे गई? ठीक है, एवरीबडी वॉज पोस्टिंग देयर फोटोज ऑफ लाइक दैट वायरल 80s का ट्रेंड। दिस वुमन ऑल्सो डिड, दिस ज्वेलर रिकॉग्नाइज्ड हर, उसने साइबर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। द केस वॉज रीओपन्ड एंड लेटर शी वॉज अरेस्टेड एंड इवेंचुअली कन्फेस्ड ऑल्सो कि उसने चुराया था।
1: ओ ओके, तो फिर तो ठीक है।
0: लाइक हु 80s ट्रेंड में उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा उसके साथ।
1: बताओ ये ट्रेंड का कोई फायदा भी होता है इसका मतलब है, कहीं ना कहीं
0: लग रहा है
1: पर लोग इससे बुद्धू भी बन जाते हैं। इसका ये भी मतलब है भाई साहब, ट्रेंड है तो ट्रेंड है, दैट मींस किसी इंसान ने वेले बैठे हुए शुरू किया है, ठीक है,
0: करेक्ट।
1: डजंट मीन दैट यू हैव टू जंप। रिमेंबर दैट बकेट चैलेंज, द कोल्ड वाटर बकेट चैलेंज। मैंने जाके बीच पे किया था वो।
0: आई रिमेम्बर दैट ऑल्सो, दैट वीडियो।
1: ओह नो।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: भाई ऐसा है कि मस्ती मैडनेस पर जब तक हम पूरे के पूरे मैनकाइंड एनिमल काइंड हर किंगडम की बात ना कर लें तब तक ऐसा लगता है कि दिन ही पूरा नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज ऑफ कोर्स रेणुका विद अंतारा।
1: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: कौन से काइंड की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, खुलासा करेंगे हमारी रेणुका। हम किसको इंक्लूड करने वाले हैं आज के हमारे इस मस्ती मैडनेस में?
0: क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की बात करेंगे। जी जी, अब ये जो क्रोकोडाइल है इसका नाम है हेक्टर, और हम इसको क्यों जानते हैं, क्योंकि हेक्टर एक जू में रहता है, और हेक्टर जो है उसको लुइजा के साथ में, ठीक है, बहुत टाइम तक पोलैंड के इस जू में रखा गया। ये दोनों छोटे छोटे थे जब इस जू में आए थे, पोलैंड में 1973 में आए थे, और फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी ये दोनों के दोनों जो हैं दे यूज टू मेट रेगुलरली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन बहुत एंथुजियाज्म के साथ में, लेकिन फिर भी इनके इनका कोई बेबी नहीं हुआ, इनका कोई सिंगल भी ऑफस्प्रिंग नहीं हुआ। लेकिन बहुत सी डेकेड्स ऑफ कंफ्यूजन के बाद में जब स्पेशलिस्ट और वेट सारे के सारे उन्होंने हेक्टर को ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा इसका जो एनाटॉमी का जो साइज है, तुम समझ रही हो ना, मैं काफी रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ, जो साइज मैटर्स।
2: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या बोल रहे हो आप। आई कुडंट अंडरस्टैंड, टू मच इंग्लिश फॉर मी, व्हाट वाज इट,
0: नेवर माइंड, और फिर बताऊंगी। बट इसका जो साइज है एंड साइज मैटर्स, इट कुड नॉट ब्रिज द गैप रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि डिस्टेंस इतना था कि जिस वजह से लुइजा बेचारी बिल्कुल भी मतलब नहीं कुछ कर पा रही थी। सो 46
2: रिस्पेक्ट दे दिया आपने तो।
0: तो 46 ईयर्स तक दोनों ने कोशिश करी बट रिप्रोडक्टिव फेलियर हो गया, और उसके बाद फिर भी लुइजा किसी और क्रोकोडाइल के पास नहीं गई। उसने कहा मैं बच्चे नहीं करूंगी, लेकिन मैं करूंगी तो हेक्टर के साथ ही। और बेचारा हेक्टर ने कहा करने की कोशिश तो कर रहा हूँ बहन, लेकिन बहन तो नहीं खैर, बट पहुंच नहीं पा रहा। एक जिंदगी काफी नहीं है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो गाना भी अच्छा लगता है इसमें तो।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: अब जब हम एनिमल काइंड में एंटर कर ही चुके हैं तो पेश करते हैं एक और फ्रॉम दिस काइंड.
0: They make Friday mornings the fun.
2: धीरे धीरे नेशनल जियोग्राफी चैनल बन जाता है ये, एनिमल किंगडम बन जाता है ये. हम कहां कहां से कहां कहां पहुंचा देते हैं इस शो को. दिस इज कॉल्ड मस्ती मैडनेस. द वन किंगडम दैट वी डोंट टॉक अबाउट इज बॉलीवुड का किंगडम. क्यों भाई?
1: हाँ जी, बड़े ही क्यूट पांडा के बारे में तो सुना ही होगा आपने. बड़े ही अडोरेबल से, क्यूट से, और ये भी सबको पता है, जेनरल एक इन्फॉर्मेशन है कि बड़ा ही मुश्किल. सब चाहते हैं कि ये कुछ करे और इनका बच्चा हो, सब चाहते हैं, सो दैट इनकी जो चलती रहे आगे, पांडा और आते रहे, बनते रहे इस तरह से. बट द प्रॉब्लम इज दैट पांडास जो है ना, उनको मेट कराना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. व्हाई? बिकॉज इनका जो पीरियड ऑफ मेटिंग होता है ना, जैसे क्रोकोडाइल का भी आपने बताया काफी बार आता है, इनका सिर्फ एक विंडो होता है ऑफ 24 to 72 hours पर ईयर.
2: यस, ट्रू
1: ट्रू. सो आपको पता है ब्रीडर्स कभी कभी क्या करते हैं? एक्चुअली इट वॉज सो सिमिलर इन माई माइंड, सो आई वॉज लाइक, ब्रीडर्स जो है ये इन पांडास को दिखाते हैं वीडियोज, अदर पांडास डूइंग इट.
2: इनको भी पॉन की जरूरत पड़ती है टू रेडी. बट यार, तुझे याद है कुछ साल पहले सिंगापुर में जो हमारे दो पांडास थे, जिया जिया एंड हाँ, तो वो भी जब द मोमेंट दे स्टार्टेड मीटिंग, राइट, पूरे न्यूज में फ्लैश होने लग गया ऑल ओवर द इंटरनेट, दे आर मीटिंग, दे आर मीटिंग, दे आर मीटिंग. वो उस चक्कर में क्या हुआ, बेचारा सारे उसके उनके आसपास खड़े हो गए, फोटोज हो गए वो. हाँ, उससे फिर नहीं हुआ. फिर उसके बाद जैसे मीटिंग करते हैं, इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन के लिए द वुमन पांडा को लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल, राइट. तो वो क्या करते हैं, उसको एकदम से बेहोश करते हैं और उठा के लेके जाते हैं, भागो भागो भागो, इसका फर्टिलाइज होना जरूरी है, जरूरी है. वो इतने स्ट्रेस में बेचारा. इमेजिन तुम जैसे कुछ करने लगो, तुम्हारे आसपास 10 लोग आज तो कर रहे हैं. यस, व्हाट इज,
1: मतलब ये क्या है, पब्लिक आसपास ले, मतलब बेचारा वो करे भी तो कैसे. एक तो तुम चाहते हो वो करे, फिर तुम उसको ऐसे कर रहे हो, फिर उसके बाद उसकी बंदी को भी लेके जा रहे हो इस तरह से, मतलब क्या चल रहा है ये.
2: सोचो मैंने किया क्या है, व्हाट हैव आई डन. एक तो उसका भारी शरीर बेचारा उठा के करने तक में ही.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: अब भाई किसी भी बिजनेस के लिए पैसे बनाना बहुत बड़ी बात है. प्रॉफिट वॉफिट डिक्लेयर हो जाए तो फिर पार्टी करना भी बहुत जरूरी है. क्यों भाई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: मुझे याद आया किसी ने प्रॉफिट की बात की थी. रिसेंट कमेंट एक पोस्ट पे किया था किसी के बॉस ने.
1: जी, तो जी जी बिल्कुल करी थी. तो अब ऐसा है कि एक बहुत ही वायरल सोशल मीडिया मीम है जिसके अंदर एक पुणे बेस्ड कंपनी जो है उन्होंने एक ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रेशन मतलब ऐसी पार्टी थ्रो करी क्योंकि उन्होंने अपना पहली बार प्रॉफिट कमाया था. लेकिन राइट आफ्टर द पार्टी द कंपनी वेंट बैक इनटू फाइनेंशियल लॉसेस बिकॉज़
2: दैट वाज क्विक.
1: इट वॉज क्विक बिकॉज क्या है कि इनको पहले प्रॉफिट बनाने नहीं आते थे और जब प्रॉफिट बनाने आए तो इनको पार्टी करनी नहीं आती थी. तो इन्होंने इतना मतलब ग्रैंड एम्प्लॉई बैश दे दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ द पार्टी था वो प्रॉफिट से भी ज्यादा हो गया. तो उसकी वजह से कंपनी फिर से रेड में चली गई. अब ऑब्वियसली इसकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो है नहीं ना कुछ है, लेकिन एक कॉर्पोरेट जोक है या ये सच का मीम है ये अभी तक किसी को पता नहीं लगा है. बट मेरे को सामने ये जब न्यूज आई तो मैंने कहा भाई ये तो बताना बहुत जरूरी है सबको. क्यों अंतरा है कि नहीं?
2: इसीलिए हमें आईफोन नहीं मिले नए वाले, यही वो रीजन है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. ये भी मत भूलना कि चाइना में मिले थे वो, बाद में पता लगा तुमने कि वो चले कि नहीं चले.

0: गांधी जी ने कहा था कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी. तो हम सोच रहे हैं पार्टी, हम कहने वाले हैं कि पार्टी करेंगे हम, और हम करने वाले हैं पार्टी ऑल इन हार्मनी दिस वीकेंड.
1: रेडियो मस्ती कभी नहीं हुआ.
0: आओ माशुका चले यहाँ से, चलो चलो.
1: ये तो कब कब होता है ये कि जो हम सोचते जो हम करते और जो अल्टीमेटली होता है.
0: देखिए
1: मतलब हम हैप्पी नहीं है,
0: अगर नहीं हम हैप्पी नहीं है, हम कभी हैप्पी नहीं हो सकते. इनफैक्ट इंसान हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं तो उसकी जरूरतें और नई शेप ले लेती हैं. आप जानते
1: जी बाबा जी.
0: इससे पहले कि मैं इसको और ज्ञान दूं, देखो तुम्हारा मुझे पता नहीं, मैं जरूर जा रही हूँ यहाँ से. ओके, एंड ऑन रेडियो मसी 24/7 हम यही कहेंगे कि आप भी यहाँ से जाएं और पतली गली से कट के हमको अपनी जेब में रख के और पूरा दिन घूमें, लेकिन लेकिन फ्राइडे की पार्टी जरूर करें. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बाय बाय, दिस इज मस्ती मैडनेस. अंतरा तुम्हारा वीकेंड का क्या प्लान है ये फटाफट बता दो.
1: हाँ जी, क्योंकि बॉस ने अब कह दिया तो अब तो आज पार्टी करेंगे, आज तो बॉस की परमिशन है.
0: परफेक्ट, बॉस की पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल परमिशन है. आफ्टर द शोज आर ओवर 8 PM के बाद. ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड.
1: चांद पे चली जाना, लेकिन दो पराठे बना के जाना.
0: एग्जैक्टली.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ, ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आपके

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

जो मिला खो गया क्या मेरे पास है, दर्द ही दर्द है।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

0: नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्यों ना क्यों सताते हो।

0: पियोगे?
1: मैं नहीं पीता।
0: सिर्फ एक घूंट?
1: सिर्फ एक।
0: मेरी खातिर।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh Mehra.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.